FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: system that is love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: Smack him back.
1: Yeah. FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: इन द वे टू स्टार्ट दिस इज द मॉडल इन द हाउस कम ऑन

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: रास्ते भी अजनबी हैं, चेहरे भी अजनबी हैं, बेचारगी है हर तरफ, बेगानगी है। कल भी एक आरजू थी और आज भी एक आरजू है, काश कोई हम सफर मिल जाए।
1: कोई हम सफर नहीं है, कोई जाने जाने।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: हेलो हेलो, हु इज दिस?

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: I'm dead without you.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: और बैंक चाहते हैं कि भाई अगर आप 1-2 लाख का तो कर रहे हैं फ्रॉड तो कोई बात नहीं, अगर आप टैक्स में और मंथ में ही मिलियंस का फ्रॉड कर रहे हैं तो फिर आपने बैंकों के साथ कितना लोन और कितने फ्रॉड किए हैं। तो इसलिए ये गवर्नमेंट ने इन लोगों को इजाजत दे दिया कि आप जिसको चाहे रखें, अभी भी अच्छे बैंक हैं, अभी भी अच्छे लोग हैं, अभी भी बैंकर्स ऐसे हैं जो आपको ज़ाती तौर पर जानते हैं और वो आपकी पोजीशन को देख लेते हैं कि भाई ये बंदा कैसा, तो अभी भी वो आपके गुफ्तगू से आपके कारोबार से मुतासर होकर आपको बैंक अकाउंट खोलने की इजाजत दे रहे हैं। लेकिन एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे जो काउंसलर्स हजरात हैं जो इस वक्त एक्टिव हैं, वो बजाय छुट्टियों पे घूमे फिरने के, उनको ये चाहिए कि कुछ दिन अपनी उस अवाम को भी दे जिस अवाम ने उनको वोट दिया। तो ये चीजें जो है हमारे यंगस्टर्स को सोचना चाहिए कि हमें आजादी किस तरीके से हासिल होगी। आजादी खून बहा हासिल नहीं होती, आजादी जो है आप अपनी अकल से लेते हैं, और अकल इस्तेमाल करने के लिए हमारे यंगस्टर्स जो है आज के जमाने में बहुत शौर रखते हैं। सिर्फ ये है कि इस शौर के साथ उनको ताकत मुहैया की जाए, उनके पीछे लोग हों। यानी कि जैसे कि अभी मेरे भाई, छोटे भाई एसएफ में जा रहे हैं, इनके साथ अगर 50-60-100 बंदा जो है उनकी गैदरिंग हो और वो एसएफ वालों को पता लगे कि ये बंदा सिर्फ अकेला नहीं आ रहा है, इसके साथ कितने बंदे आ रहे हैं, तो वो एक पावरफुल बंदे की हैसियत से उसमें शामिल होगा।
1: क्या शाह साहब ये सारी पार्टियां उसी तरह की बातचीत करने की आजादी देते हैं, फिर कहते हैं फलां को निकाल दिया, फलां ने ये बात नहीं मानी थी, फलां ने निकाल दिया, जिस तरह मौल जुकेटफ की पार्टी में ईसाई में किसी बंदे ने कोई बात की थी तो उसे पार्टी से फारग कर दिया। तो शाह साहब क्या ये लोग सारी चीजें सोच कर जाते हैं?
0: देखिए, जब आप किसी पार्टी के मेंबर बनते हैं तो वहां पे आपको जो पार्टी का मंशूर है वो बताया नहीं जाता कि हमारी पार्टी का ये मंशूर है, हम इस पे सख्ती से हम इस पे अमल दरामद करते हैं, आप ये करेंगे। मैं अगर चाहूं तो मैं रंसा का भी मेंबर बन जाऊं, डेंथ फुलके पार्टी का बन जाऊं। हाँ, डेंथ फुलके पार्टी मुझे ये कहेगी कि तुम है ही मुसलमान, तुम मेरी पार्टी में कैसे आ सकते हो, वो ये उतराज उठाएंगे। लेकिन मैं अगर उनको कहूँ कि नहीं नहीं मैं मेरे ख्याल आपसे मिलते हैं तो मैं बड़ा बुरा हूं, तो वो कहेंगे ठीक है अब तुम हमारी तरह के आ जाओ। तो असल मसला ये है कि आपने जब किसी पार्टी को ज्वाइन करना है तो उसका पहले आप देखें। अभी मैंने ये जो बात की थी पहले स्टार्ट में सियासत में कि ये जो SF है, जो अपना इनिसलिस्टन है, अल्टरनेटिव है, रेडिकल रंसा है, इन्होंने किस बात पे वोट लिए थे? इन्होंने वोट लिए थे फलस्तीन के साथ खड़े होने के लिए। इन्होंने वोट लिए थे जो यहाँ के मुसलमानों पे और फॉरनर्स के ऊपर जो जुल्म हो रहा है यहाँ डेनमार्क के अंदर, उनके लिए इन्होंने आवाज उठाई और इनको सबसे ज्यादा वोट जो है वो कोपेनहेगन और वेस्टाइन और दूसरे इलाकों से इनको वोट मिले और ये सामने आए। और इनको इन्होंने किसकी मुखालफत की? इन्होंने PDM की गवर्नमेंट की मुखालफत की, इन्होंने सोशल डेमोक्रेट की मुखालफत की, इन्होंने कोपेनहेगन से सोशल डेमोक्रेट को बाहर निकाला, उनकी मेयरशिप जो है वो छीन ली। तो अब क्या उसी पार्टी के साथ ये दोबारा खड़े हो गए हैं? अब होगा क्या, होगा क्या, किस तरीके से इन्होंने किया? क्या ये हमारी आवाजों को जो है उनसे बात करना चाहेंगे? नहीं, ये सिर्फ वो बात करेंगे जो इनके अपने पूरे मुल्क के लिए अच्छी है। ये बात करेंगे कि हमारे डांचों को जो है हम भी डांश हम याद आते हैं, हमें मेडिकल कैसे मिल रहे हैं, हमें फलानी चीज स्कूलों में फलानी चीज, ये 4-5 चीजें मंजूर करके तो ये इनके साथ ज्वाइन करके बैठ जाएंगे। ये कभी ये नहीं कहेंगे कि भाई आप लोगों ने वो महकमा जो है अपना वुलिंग का ये डेस्परेट में ले गए हैं और पूरे मुल्क में दूसरों को ये सहूलत दिया तो कोपेनहेगन और वेस्टर्न के लोगों को आप क्यों नहीं ये सहूलत दे रहे, आप इसको वापस लाए या इनकी पावर सर्विस के साथ इनको चिड़खिड़कार दिया जाए, इनको सामना, ये बातें नहीं करेंगे। ये वो बातें करेंगे जो इनके अपने मफाद के लिए और जिसके लिए इन्होंने हाँ की है। तो हमारे लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि क्या इसके अंदर हम इनके मेंबर बनकर इनकी सोच को मर्दम कर सकते हैं, इनकी फौज को वापस ला सकते हैं, जब इनको पता लगे कि इनको बताया जाए कि हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे आने वाली नस्लों की प्रॉब्लम्स क्या है, हम किस तरीके से क्राइम को रोक सकते हैं।

0: हम किस तरीके से यहाँ पे इंटीग्रेट हो सकते हैं, जैसे कि 70s और 80s और 90s में हमारे साथ होता था। यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट किया जाता था, लोगों की सुनी जाती थी, लोगों के साथ कम्युनिकेशन किया जाता था। कम्यून इतनी पावरफुल होती थी कि वहां का जो एक सेंस बहन होता था वो एक किस्म का पावर मिनिस्टर होता था। वो जो फैसला कर देती थी या कर देता था उसके ऊपर बहुत कम चीज होती थी और बड़े ईमानदारी से वो आपकी बात सुनते थे। लेकिन अब आपको पता ही नहीं है, आपके ऊपर जो सियासतदान बैठे हुए हैं उनको नहीं पता कि नीचे क्या हो रहा है। हमने इतनी आवाज उठाई, बल्कि ये इंटरनेशनल अपना पूरे नेशनल लेवल पे डायलॉग में गई कि भाई यहाँ पे पीने का पानी साफ नहीं होता, पानी पीने का पानी सबसे गंदा तरीन है, जहरीला पानी है। इन्होंने इलेक्शन में पानी को लेकर चले और कहा कि ये 35% गंदा तरीन पानी है, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये 35 नहीं, ये 70% गंदा पानी है। और प्रूफ कर सकते हैं, हर जगह से प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन क्या हमारे काउंसलर्स इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि कैंसर फैल रहा है, ज्यादातर पैसे लग रहे हैं, इंसान को सेहत के लिए क्या चीज करनी चाहिए। आप पार्कों में चले जाएं, खून लो, कानून बना हुआ है कि कुत्ते को जो है अगर वो कहीं पे वो कुत्ता पार्टी करता है तो उसको आप उठाए, उसको ले जाकर अपना स्कॉर्पियन में जहाँ गंदगी फेंकने की कोई डब्बा आपको मिलता है उसके अंदर फेंके। लेकिन यह क्या कर रहे हैं, आप जाए स्टंट पे चले जाए वहां पे भी आपको कुत्तों की पार्टी मिलेगी हर जगह। तो कानून जो है ये इसका मजाक जो है ये हमारे अपने बनाए हुए लोगों ने किया है। हम तो अपनी जुबान वाले लोगों को कह सकते हैं ना कि हमने आपको वोट दिया सिर्फ इससे ये वोट दिया कि आप पाकिस्तानी है, लेकिन काश के हमने डेंचो को वोट दिया होता और डेंचो के साथ बैठ के उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताई होती तो वो हमें बेहतर तरीके से हमारे मसाइल को जो है वो सुलझा सकते थे। जी राजेश साहब,
1: शाह साहब आप सारी बातें डेनमार्क की जमहूरियत की कर रहे हैं, तो शाह साहब जिनके लिए आप फाइट करना चाहते हैं वो खुद जमहूरियत पसंद ही नहीं है।
0: ये अल्लाह के फजल से बच्चे जो हैं ये सारे जमहूरियत पसंद है, जितनी यंग जनरेशन है फर्स्ट और सेकंड जनरेशन है ये सारी जमहूरियत पसंद है। जो फर्स्ट जनरेशन जिसमें हम लोग आए हैं, हमें अख्तिलाफ राय है लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना कि चंद एक लोगों में खराब पाया जाता है। लेकिन असल मसला यही है कि क्या हमने कभी ये सोचा है कि हमारी कल आप देख रहे हैं मेला के अंदर, आज भी मेला लगा हुआ है ट्रांसफॉर्म में, जहां जहां पे भी मेला होगा आप देखेंगे कि हमारी खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा है। तो फिर उन्होंने ये सारा एक मीटिंग बनाई और इसके अंदर ये फैसला किया कि बजाय हम लोग अपने पास से या इस चीज को खत्म करें, हम जो यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं उनसे एक मामूली सी फीस जो है वो ले लें। और उसको अब ये नहीं हम कर सकते कि हम लोगों को कहें जी कि ये आप 10 मीटर की जगह ले लें।
2: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا فرمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، کچھ بریکنگ نیوز ہوتی ہیں جب بھی ملتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو موسم بھی تو آج بہت اچھا ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، ٹیمپریچر بھی کافی بڑھ چکا ہے، لیکن سیاسی ٹیمپریچر جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے، چونکہ حکومت جو ہے وہ بننے جا رہی ہے، وزراء ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں، ابھی مکمل تو نہیں ہوا لیکن بہت ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری سیاسی تبدیلیاں آ رہی ہیں، کون سے وزراء بن رہے ہیں اور کون سی غیر ملکی مسلمان بھی جو ہے وہ وزیر بننے جا رہی ہے، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے تجزیہ نگار عدنان امین علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: السلام علیکم رضا صاحب، بسم اللہ الرحیم، آپ کیسے ہیں رضا صاحب؟
1: اللہ کا شکر ہے عدنان۔ میں نے بات کی گرمی کی، سیاسی ٹیمپریچر تو اب کم ہو رہا ہے چونکہ حکومت بننے جا رہی ہے، اور آپ کیا کہیں گے؟
2: ہاں رضا صاحب، موسم تو کافی گرم آ گیا، اور اس کا کیا کہتے ہیں، اس کا ایک بندہ کہہ سکتا ہے، اس کی بڑی عجیب خوبصورتی ہے، چیز ہوتی ہے قدرت کی بھی۔ کیا آپ دیکھیں، جب یہ گورنمنٹ پہلے کانگریس گھومتے آیا تھا تو اس کا وقت بھی گرم موسم آ گیا تھا، اور جب لاسٹ لوکے نے دوسری عورتیں کی تھی تو بارش شروع ہو گئی تھی، تو جب وہ ختم ہوئی ہے پھر دھوپ آ گئی ہے۔ تو اللہ کرے اس دھوپ کی کیا کہتے ہیں نشانی یہ ہوگی گورنمنٹ کوئی اچھا کام کرے گی، کیونکہ اب سورج ان کے لیے قسمت میں، موسم کافی گرم ہے اور ان کے لیے بھی کافی ہاٹ ہے اندر، کیونکہ جب نیگوشیشن چل رہی ہوں تو پھر تو کافی ہاٹ ہوتا ہے۔ اور خبر یہی ہے کہ ہاں، آپ نے جو بریکنگ دی ہے کہ ایک مسلمان ہے، اس کا چانسز ہیں کہ وہ ڈیفینیٹلی کوائٹ شیور ہے کہ وہ 95% مسٹر بنے، پر کھیل ویسٹ گورنمنٹ میں گئے تو اس کا چانسز کافی ہیں وہ ماتھا لیکو کے ساتھ بنے گی، کیونکہ ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو اس نے پرسنلی ووٹ بھی اپنے چیئرمین سے 1000 زیادہ ووٹ لیا تھا جب الیکشن ہوا تھا، اور وہ کافی پاپولر ہے اس پارٹی میں، اور وہ بڑی کھیل ویس تک کی نیگوشیشن ٹیم میں بھی ہے، وہ ڈیل اس وقت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے تک گورنمنٹ کیا کہتے ہیں تیار ہو جائے گی۔
1: تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ریڈی کیل کو 2000 ملنے جا رہی ہیں؟
2: جی، میرے خیال سے ان کو 3 ملیں گی، مرغات کو بھی 3 ملیں گی، اور 3 or 4 ملیں گی، اور باقی پھر ایسے اور سوشل ڈیموکریٹس ہے، کیونکہ اس میں ایک اور وجہ بھی ہے کہ لاسٹ لوگ کی جو اس کی خاص ہے کہ مسٹر 25 سے کم ہوں، لاسٹ لوگ کی تو خواہشیں کافی ہیں، مگر وہ تو بندہ کہہ لے کہ اس قسم کا، وہ تو ایک قسم کا، اس کے پاس تو اب اتنا کہنے کے لیے ہے ہی نہیں، جو اس کے گیم کھیلی تھی اس کا تو اس کو الٹا ہی اثر پڑا ہے، تو اس کے پاس تو اب یہی ہے کہ وہ بیٹھ کے ہاں ہاں کرتا جائے، اس کے لیے فائدہ یہی ہے، کیونکہ دوبارہ الیکشن میں نہ جائے، دوبارہ الیکشن میں گیا تو میرے خیال سے وہ تو نمی کو اٹھا لے گا، تو اس لیے وہ تو پھر آپ دیکھتے ہیں۔ میری اپنی ہے کہ 20 to 22 مسٹر ٹوٹل بنیں گے، جس کے اندر 60-8 ملیں گے سوشل ڈیموکریٹس کو، اور 5-6 ایس ایف کو ملیں گے، اور پھر باقی کا دیکھا جائے گا یہ دونوں کتنے دیتے ہیں۔
1: تو باقی ظاہر ہے جھونگے کی بھی کوئی نہ کوئی وزارت تو ہوگی، تو لیکن یہ بلو بلاک کو اس کا مطلب ہے شکست ہوئی۔
2: ہاں، ان کی تو شکست کافی بڑی ہوئی، اور ان کی بڑی کیا کہتے ہیں، بڑی لاسٹ ہے کہ یہ نہیں حکومت بنا سکے جب موقع تھا۔ میرے پہلے صاحب، وہ بھی تو دیکھا جائے نا، وہ بھی مشکل تھا، کیونکہ جب وہ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور اس نے ڈائریکٹلی کہہ دیا تھا کہ لاسلو کا مسٹر نہیں بن سکتا، تو پھر تو آپ سے مشکل ہی تھا، کیونکہ سب کو پتا کہ لاسٹ لوگ کے دماغ میں ایک ہی چیز ہے کہ وہ مسٹری دینا چاہتا ہے، اور وہ اس کی یہی خواہش ہے، کیونکہ اس کے اندر یہ بھی تو ہے نا کہ یہ بھی تو ابھی دیکھنا ہے نا کہ پارلیمنٹ کا چیئرمین کون بنتا ہے، کیونکہ جو جو جو جو جو فالکے سنگھ سومین ہوتا ہے اس کی تہاں بھی اتنی ہوتی ہے، اور اس کی ذمہ داریاں بھی اتنی ہوتی ہیں، کافی ہوتی ہیں، اور اس کی تہاں بھی اتنی ہوتی ہے جتنی سٹیٹس مسٹر کی ہوتی ہے، تو ایک قسم اس کے قریب ہی ہوتی ہے۔ سو اب یہ بھی تو دیکھنا نا کہ فالکے سنگھ سومین کون بنتا ہے۔
1: تو یہ پہلی دفعہ آ رہی ہے حکومت میں ایس ایف، یا کہ پہلے بھی حکومت میں رہی ہے؟
2: پہلے رہی ہوئی ہے، لیٹسٹ جو رہی ہے، لیٹسٹ جب یہ رہی تھی، اور कि वो थी 2011 में जब वो बनी थी हेलचोम स्मिथ, उस वक्त हुकूमत में थे ये, और ये सेकंड टाइम है। तो उस वक्त इनका काफी नुकसान हुआ था क्योंकि इनकी पॉलिसी इतनी नहीं थी कामयाब हो सकी।
1: तो इन इस लिस्टन को वजारतें तो नहीं मिल रही, लेकिन कोई पोस्टें तो ज्यादा डेफिनेट मिलेंगी।
2: सब वो पोस्टें तो उनके पास नहीं, उनको इतनी है, वो हो सकता है कि उनको कोई जो फॉल के चेंज स्कूल वाला है उसके अंदर कोई उनको स्टॉक पोजीशन मिल जाए। मगर देखा जाए तो टेक्निकली तो उनके पास क्या कहते हैं पार्लियामेंट का आखिरी मंत्री तो उनके पास ही होंगे ना। और मेरे ख्याल से जो जो जो लास्ट लुकी की स्पेल है कि जो मैं दिमागी तौर पे एनालाइज की तरह देखूं, तो वो मेरे ख्याल से ये स्पेल खेल रहा है कि ये गवर्नमेंट बन जाएगी तो बाद में जब क्या कहते हैं बजट वगैरह बनाने हम करेंगे तो मैं वेंचता और कंसर्वेटिव का अंदर ले आऊंगा, पर उसका तो उसको फायदा कोई नहीं है क्योंकि वो उनको लाने की अंदर कोशिश करेगा तो जो पार्लियामेंट है कौन ले लेना टीम वो फिर इस हुकूमत को बिल्टा कर सकते हैं। तो देखा जाए तो अपना अपना हिसाब देख रहे हैं इस वक्त, मगर काफी क्योंकि जो आपने शुरू में बात की है जैसे कि एसएफ गवर्नमेंट में रहा है कि नहीं रहा, तो उससे बंदा देखे तो इंग्लिश लिस्ट ने काफी सबक 2011 से सीखा हुआ है। क्योंकि आपको शायद लोगों को व्यूअर को इलम ना हो, शायद आपको इलम हो कि 2011 में एक इश्यू बना था बहुत बड़ा, वो ये बना था कि इंग्लिश लिस्ट के साथ एक स्कैडर का फॉर्म बन गया हुआ था। और जब वो स्कैडर का फॉर्म बन गया हुआ था ना तो हेलिसोन स्मिथ और प्यान खौन तक जो छोड़ गए सियासत, जो आजकल डीआर का डायरेक्टर है, कैनाल डायरेक्टर बन चुका हुआ है, उसने ना आखिरी मिनट में प्लो प्लॉक के साथ बना ली। और वो बात इंग्लिश लिस्टनिंग को आज भी याद है और वो इसीलिए क्या कहते हैं कल उनकी करीबन कल 2.5 घंटे की मीटिंग रखी गई हुई थी, मगर वो मीटिंग 5.25 घंटे हुई है क्योंकि मेरे ख्याल से उन्होंने उस एक्सपीरियंस से सीख लिया हुआ है कि हमने अपने मंत्रिरा जो है ना सही तरीके से इस्तेमाल करने हैं। और आज जो निगोशिएशन है जो 5 बजे रात को शुरू होंगी, उससे पहले कॉन्गली ओनस ने जो दो ग्रीनलैंड के और दो फेडरल आइलैंड के मंत्रिरा हैं उनको भी बुलाया हुआ है कि उनकी क्या ख्वाहिशें हैं। सो एक किस्म का देखा जाए ना तो ये होमवर्क इतना स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि कम से कम 2-2.5 साल तो ये गवर्नमेंट चल सके,
1: 2-2.5 साल हुकूमत चल सके। तो अदनान, ये आपने देखा होगा कि जो गैर मुल्की लोग सियासत करते हैं या जो गैर मुल्की सियासतदान हैं, पार्टियों के मेंबर्स भी हैं, तो ये पावर पॉलिटिक्स करते हैं, आप क्या कहेंगे?
2: राज साहब देखिए, मैं इस पे मैंने आपको पहले भी कहा है कि मुझे इस बात बड़े क्वेश्चन होते हैं। आपको हमेशा ये देखना चाहिए कि आपका पार्टी का एजेंडा क्या है, आपकी पार्टी की पॉलिसी क्या है, आपकी पार्टी के अंदर चीजें क्या है। हाँ डेफिनेटली हो सकता है कि हर चीज में आप शामिल ना हों, मगर जब आप सियासत के अंदर बढ़ते हैं ना तो आपको हर मसले का मसाइल का जो होता है ना उसको लेके चलना होता है। और इस वक्त जो सूरत हाल डेनमार्क की चल रही है और जिस वजह से ये क्या कहते हैं हुकूमत बन नहीं रही और बननी थी रही, वो यही है कि जो एक मॉनली पॉलिसी है ना उसमें बड़ा गौर किया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से सूरत हाल है कि 2-3 साल के अंदर हो सकता है कि माइनस की तरफ जो स्टेट बजट होता है वो जा सकता है, बंदा सही तरह से ना बने। तो बंदे को ये हमेशा याद रखना चाहिए कि जब बंदा पॉलिसी में जाता है बंदे को हर चीज का नहीं मालूम होता, पर इतना तो पता हो कि बंदा किस जगह पे खड़ा है और कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, कौन कौन सी चीजें नहीं आ रही। एडमिसलोन में एक आएंगी, ग्लोस्टो में दूसरी आएंगी, टॉस्टो में तीसरी आएगी। अब इस वक्त जो जो जो सूरत हाल है, आज हो गई है 28 मई, हुकूमत अगले हफ्ते जाके बने जून के अंदर कह लेते हैं, पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते 1-2 हफ्ते वो लगाएंगे चीजें चेक करने में। जुलाई मंथ में फिर करीबन जाके आपको पता चलेगा कि कमून रीजन के बजट क्या है, अल्लाह करे पहले पता चल जाए होमवर्क हो गया हो, मगर मिड जून में पता चलेगा जो मई में पता चल जाता है। तो हमारे सियासतदान को ये बड़ा रखना चाहिए कि हमने जब ये बजट आएगा उसको कैसे लेके चलना है, कहाँ पे कैसे कमी पेशी क्या है, जहाँ पे खर्चे हैं कहाँ पे खर्चे नहीं हैं, क्योंकि ये हमेशा राजा सब याद रखना चाहिए कि हर चीज़ के खर्चे होते हैं। और मैं तो एक एग्जाम्पल एमस्लूम में रह रहा हूँ, मुझे पता है कि किस एरिया में कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं और कहाँ पे हैं। अल्लाह का शुक्र ये है कि जो मुझे जो हमारे पास इंफॉर्मेशन वो है कि इधर की जो कमूने हैं अभी तक ठीक है, मगर सूरत हाल बनने का कोई पता नहीं चलता। और ये चीज़ें बनने को गौर से देनी चाहिए, क्योंकि जैसे मोटी एग्जाम्पल है, जब हमने फरवरी में इलेक्शन लिखा था, हमने मेरे ख्याल से जुमेरात वाले दिन इलेक्शन लिखा था, हफ्ते वाले दिन ट्रंप ने ईरान पे हमला कर दिया था, पूरी गेम चेंज हो गई, सूरत हाल पूरी चेंज हो गई, हमें पता था कि कोई चीज़ है। और ऐसे सूरत हाल कभी भी चेंज हो सकती है,
1: ऐसी सूरत हाल कभी भी चेंज हो सकती है। तो अदनान, बाकी ये ब्रेकिंग न्यूज आज ये भी चल रही है कि आप जो साइन करते थे, आप अपनी पार्टी को रजिस्टर्ड कराते थे तो 20,000 साइन की ज़रूरत होती थी और चेक एंड बैलेंस भी था, तो अब जो है वो 50,000 तक की जो है वो बातें सुनने को मिल रही हैं, और उसके साथ मुख्तलिफ सियासतदान भी बयान अपने अपने दाग रहे हैं, आप क्या कहेंगे?
2: राजा साहब ये इन्फॉर्मेशन सही है, इसके अंदर ये हुआ है कि ये बात इसलिए चली है कि जब इलेक्शन हुआ था ना 24 मार्च को मंगल वाले दिन, 3 दिन बाद ही ना एक पार्टी से ना बंदे पहले उसने निकाला, फिर दूसरा उसका छोड़ गया, फिर एक और आ गया बीच में, वो उसकी पार्टी का था, वो नेपाल राग से का था, मगर वो बहुत दूसरी बात थी, वो कैम्बिस का वो उसका केस है, मगर उसने खुद ही जब आप ही भी उसने किया हुआ था वो नहीं है, तो कौन इस पक्षी का एक मिनट रह गया हुआ है। तो वो उसके बाद से ये तपैत चाह रहा है कि बंदा स्पैंक खान से 2% का 4% करे कि ज्यादा होना उसका इफ्ता करे या क्या करे, क्योंकि मसला ये है कि जो जो सूरत हाल पौनस पच्ची के बाद बनी है ना, उसके बाद ये बड़ा तपैत चल रहा है। मेरी अपनी पसंद राय ये है कि बंदे को मैं तो अभी कहना कुछ नहीं चाहता, क्योंकि जैसे मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हूँ भी हूँ और मैं अपनी राय दूँ तो इनको थोड़ा बहुत सिस्टम का कोई ना कोई करना पड़ेगा कि बंदा चेक एंड बैलेंस रखे, क्योंकि दोबारा सूरत हाल ना हो के इस वक्त मेरे हाथ से मेरे इलम में नहीं है, मैंने पढ़ा भी नहीं है कि इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर अभी पार्लियामेंट इलेक्ट ही ना हुई हो तो चार लुइस किंग बैठ जाए, ये जरा बहुत ज़्यादा है। तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत बंदे को देखना चाहिए। मैं ये भी समझ सकता हूँ कि जो आर्गुमेंट आया है कि पहले बंदे को क्या कहते हैं जाके खुद लिखा के भेजनी पड़ती थी, अब आप कंप्यूटर से बहुत कुछ कर सकते हैं, तो बहुत सारे डिबेट चल रहे हैं, मगर मेरी पर्सनल राय आप पूछें तो इसका कोई ना कोई तो हल निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि बंदा इलेक्शन हो तो 3 या 4 बंदे पहले लिस्टिंग में हैं, ये जरा थोड़ा क्या कहते हैं कोई ना कोई चेकिंग होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए इसका मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, मगर जो जो बात चल गई है वो चल गई है। मैं समझ सकता हूँ कि लोग इस बात पे परेशान होंगे कि 5.8 मिलियन बादी है डेनमार्क में, तो 50,000 उसका हफ्ता लेना बड़ा मुश्किल भी है, मगर वो भी सेम चीज़ हो सकती है, फिर बंदा एक बीच में हल कर सकता है, जैसे एक ने कहा था कि हम 3.0 स्पैंक्स कहाँ से कर देते हैं, बीच का हल ले आते हैं, तो देखते हैं अब क्या बनता है राजा साहब, मगर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना कि बंदा एक पार्टी सेंसिबल हो, क्योंकि जो ये पौन पक्षी का हुआ था ऐसे होना तो नहीं था कहीं।
1: बजाय पार्टी के अदनान, अगर जो है मेंबरान पर ये पाबंदियां इस तरह की लग जाए तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है
2: भाई, उसके अंदर वो भी तो मसला है, वो भी बंदा देख सकता है, अगर वो ये ना राजा साहब फिर वो बंदा ये करना पड़ेगा कि बंदा अपना मैंडेट नहीं लेके जा सकता, मगर वो भी हाल है, मगर कोई ना कोई हाल तो इनको करना पड़ेगा कि बंदा सेम सिचुएशन में ना आए, क्योंकि आप देखें अब एक देखें ना जिस तरह ये आप कह रहे हैं कि लो ब्लॉक अपनी गवर्नमेंट बनाना चाहते थे, हम आप एक सिनारिया देखते हैं कि वो लास्ट लोगों को भी इकट्ठा कर लेते और मोर्टमेसमर को भी इकट्ठा कर लेते, तो फिर उनको ये चार लुइस्किंग भी साथ लाने पड़ने थे, चार वो क्या कहते हैं पेडुला ग्रीनलैंड के लाने पड़ने थे, कुछ करना पड़ना था। वो तो एक क्या कहते हैं ना जीप सारी हुकूमत बन जानी थी, और सबने यही कहना था ना कि इलूला लंगरी गवर्नमेंट है, ऐसा बहुत सारी बातें शुरू हो जाती हैं। तो इसके बाद फिर इन्होंने गौर किया, हाँ मैं ये समझ सकता हूँ कि जिनने ये डिबेट शुरू किया अल्थाना चूक ने और तेंसफॉल का पची पिया क्या सामने, उनने उनको भी पता है कि ये डिबेट बड़ा कॉन्फ्लिक्टशल है, क्योंकि वो दोनों आप देखिए ना पिछले इलेक्शन से लेके आज के इलेक्शन तक 2022 का भी इलेक्शन देख लें, 2026 का भी इलेक्शन देख लें, अल्थाना चूक तो स्पैक खानसर के साथ क्या कहते हैं खुद डांस करते आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली बंदा सोच समझ की बात उन्होंने की होगी, और उनको भी पता है कि ठीक है उनने 50,000 की यूनिसेफ की इसलिए बात की होगी कि वो डेफिनेटली 50,000 यूनिसेफ की बात करेंगे, मैं ये नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि स्पैंग्स कान से ऊपर हो जाए, क्योंकि वो खुद उस डांस के अंदर लगे होंगे, तो फिर क्या कहते हैं तो बंदा कह सकता है, क्योंकि उनके लिए भी 3.0 हो जाए तो काफी मुश्किल हो जाएगा उनके लिए भी, क्योंकि ये करीबन उनको काफी वोट लाने पड़ेंगे, 2.4-2.5 था उनका इस बार मेरे हाथ, तो फिर ऑब्वियसली वो हो जाता है, मगर इस पे कोई ना कोई बात तो चलेगी, और ये डेफिनेटली कुछ ना कुछ नतीजा आएगा, और हो सकता है कि हमारी जो बाकी की पार्टियां जो ब्लॉक ब्लॉक वाले हैं लीला वाले जो बन रहे हैं ये जब सारा फाल्के सिंह बैठ जाए तो क्या कहते हैं फिर क्या क्या क्या, क्या देखें, क्योंकि व्यूअर्स को एक ब्रेकिंग न्यूज ये भी तो दे देना कि नॉर्मल फाल्के सिंह का ऑस्लोनिंग स्टपैट इस हफ्ते होना था मगर वो ऊजकूट हो गया हुआ है, क्योंकि उसका कोई वजह नहीं थी करने की, क्योंकि टेक्निकली जो होता है पार्लियामेंट वो 1 जून से लेके 1 अक्टूबर तक एक किस्म की ऐसा काम तो वो कर रहे होते हैं मगर फाल्के सिंह सेल नहीं लगती उसके अंदर, खाली फैंस लॉ वाले जन वो बैठते हैं या वो पेश करते हैं तो वो ऊजकूट हो गया हुआ है, जितनी देर तक गवर्नमेंट नहीं बनेगी और गवर्नमेंट के बाद वो डिसाइड करेंगे कि पार्लियामेंट को एक्स्ट्रा चलाना है कि नहीं चलाना है, क्या करना है।
1: अदनान क्या बात है कि एक वक्त था कि लोग जो हैं वो ज़्यादातर मेंबर बनते थे सोशल डेमोक्रेट के और उसके बाद SFM भी जाते थे और वेंस्टा में भी जाते थे कंजर्वेटिव में भी जाते थे, लेकिन जो गैर मुल्की निसाद थे वो SF में और ज़्यादातर जो हैं वो सोशल डेमोक्रेट में जाते थे। अब देखा है कि रुझान बनता जा रहा है कि SF फिर बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही है गैर मुल्कियों की वजह से।
2: यह बात सच है क्योंकि बात वही आती है ना क्योंकि लोग ना लोगों को इनवान तपुलचिक की वजह से बहुत सारे लोग जाने लग पड़े हैं और वो बात आपकी सही है, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको एक बात बताऊं आपके व्यूअर्स को भी मैं बता दूं आपके भी हो गए एक बात मैं सॉरी मैं इस बात को बात करना चाह रहा हूँ बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि परसों चौथ ईद के एक दिन पहले उसमें आपको भी इलम होगा एक वाकया हुआ है और मैं अनफॉर्चुनेटली कहूंगा कि उसका इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि इस बात को उठाया जाए कि ये जो डिबेट जा रही है इनमानता के बारे में मुसलमानों के बारे में और इस चीज के बारे में इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं ना होगा जो जैसे वो अहूस मस्जिद के अंदर आग लगाने की कोशिश की गई है, तो इस बात को भी देखना पड़ेगा कि इस डिबेट का कोई क्या कहते हैं उल्टा कॉन्सिक्वेंस तो नहीं ना होने लगा, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि उस मस्जिद में कुछ हुआ नहीं है, उस वक्त शायद एक बंदा अंदर सफाई कर रहा था कि क्या कर रहा था जिसने ये क्या कहते हैं जिसको पता चल गया था, वरना तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाना था, और ईद के दिन हज वाले दिन और अल्लाह का शुक्र है कि कोई डैमेज नहीं हुआ इतना ज्यादा और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और कमिंग डेज में ऑब्वियसली उसके बारे में पता किया जाएगा कि क्यों है, क्योंकि ये बातें भी लोगों को बताने की बड़ी ज़रूरत होती है कि ये जो डिबेट होती है ना इसको उल्टे कॉन्सिक्वेंस भी हो जाते हैं।
1: अदनान क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, ना ये बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन अब सियासत जो है लगता है कि कारोबार की शक्ल में ज़्यादा चली गई है। कारोबार से मुराद है सियासी कारोबार जो है कि बंदे को ताकत मिलती है, वक्त मिलता है। जिस तरह एकदम आपने बताया कि अभी हुकूमत बनने से पहले चार जो है लिस्कुएंगा हो गए हैं, तो ये कानूनी तौर पर इजाज़त होती है ना, परिंदा उड़ के इधर से उधर चला जाता है या किसी जगह बैठ जाता है, सहूलियात तो उसको सारी मिलती है, दाना तो उसको सब कुछ मिलता है।
2: राजा साहब यही तो बात है ना कि ये जो इस बार हुआ है और पिछली बार भी हुआ था, दो तीन गए थे और मसला पड़ा था, तो इसीलिए वो अब ये सारे कानून चेक करना चाहते हैं ना, बदलना चाहते हैं कि ये कारोबार ना हो। ये एक सीरियस क्या कहते हैं चीज होती है, क्योंकि जब आप एक जिम्मेदारी लेते हो तो आप ये जो 179 है या लोकल काउंसिल में 21 हो और 42 हो 43 हो, इनके ऊपर एक पूरे सिटी या पूरे मुल्क की जिम्मेदारी होती है। और ये कोई आसान काम नहीं है कि आपने एक कानून बनाना है, अपने पूरे मुल्क को देखना है, तो इसीलिए इस चीज को बंदे को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। बंदा किसी पार्टी का मेंबर है, उस पार्टी के अंदर गया है, तो कोई ना कोई वजह तो बंदे की है ना कि उसने उस पार्टी को चूज किया होगा, और बंदे को बड़े सोच समझ के फैसला करना चाहिए कि बंदा जब मेंबर होता है बंदे पे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
1: अदनान पार्टी में जाने के वक्त भी नजरियात होने चाहिए, छोड़ने के वक्त भी नजरियाती वजूहत होनी चाहिए।
2: दरअसल साहब देखिए, आप जब पार्टी ज्वाइन करते हैं आप उनकी पॉलिसी पे जाते हैं, आप अपनी कमिटमेंट पे जाते हैं, आप एक एक एक, एक चीज पे जाते हैं। मैं शॉर्ट वे में कहूंगा कि मेरा रेड ब्लॉक के साथ बड़ा था, और ऑब्वियसली हो सकता है कि मैं जब अपनी वे से देखूं और 5-6 महीने बाद देखूं कि नहीं ये बंदे ने रेड ब्लॉक की तरफ मेरा है, मगर हमने सिर्फ कॉम्प्रोमाइज किसी चीज के लिए किया हो, पर वो चीज ना बंदे को आ रही हो, फिर बंदा इस रीजन को सोच सकता है कि बंदे ने अब तब्दीली करनी है कि नहीं। मगर आप ये किए कि अब आपने पार्टी ज्वाइन की है, जिस तरह ये बॉन्स 25 की जो है, इसकी तो मुझे खुद समझ नहीं आई कि ये कर क्या रहे थे, क्योंकि और इनकी वजह से आप देखें ना ये सारा डिबेट शुरू हो गया कि 50,000 स्पेयरिंग खान से सब कुछ क्या कहते हैं शुरू हो गया, तो ये फजूल है। मगर बंदे को क्या कहते हैं ना, अपनी पॉलिसी पे देख के चलने की कोशिश करनी चाहिए, और अल्लाह ताला करे कि सब के लिए
1: इसके साथ वोटर को भी सोचना चाहिए, वोटर भी बिल्कुल ही इसी तरह होता है, वाग की तरह उड़ जाता है।
2: सब देखिए मसला पता क्या है, मसला ये होता है कि जब आप एक पार्टी स्टार्ट करते हैं ना, अब ये बॉन्स 25 की बात कर लेते हैं, इनने कहा था कि हम पूरा जो सिस्टम है ना उसके साथ क्या कहते हैं एक औका करेंगे, और जब इनने ये बात की थी ना, तो बाद में जब इनके सारे अपने क्या कहते हैं जो चीजें बाहर निकली थी वो सारी उल्ट थी। आप ही कुछ और कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं हम कुछ और करेंगे, तो फिर आप यहां से ही देख लेना कि लोगों का क्या कहते हैं ट्रस्ट क्या कहते हैं लॉस्ट हो जाता है। जिस तरह ये लास्ट लुके ने ये जो सर्कस क्या कहते हैं शुरू की हुई है, कराई हुई थी 3-4 हफ्ते पहले भी और आज भी कर रहा है कि संगी देखा जाए, तो फिर लोगों का मिसट्रस्ट हो जाता है सियासत पे और बंदों पे कि बंदा बात कैसे करता है। आप ये कि डेफिनेटली बंदे को पता चलता है, सबको आप पता चल गया हुआ है जिस तरह लास्ट लोगे के इसका एक ही क्या कहते हैं मकसद है, वो ये है कि मुझे बस मिनिस्ट्री की कुर्सी मिल जाए, सबको पता है, तो ऐसे पे बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट हो जाता है लोगों का।
1: अदनान आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। डेफिनेट मिनिस्ट्रीज में जो है वो सहूलियात भी बड़ी होती हैं, काम भी बड़े होते हैं, तो इंशाल्लाह दूसरे प्रोग्राम में दोबारा आपके साथ शामिल होंगे।
2: जी ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज़।
1: समय नाज़रीन, ये थे अदनान अमीन अली जो कि तजिया नगार हैं, तजिया करते हैं। समय हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं, अगर आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो आपके लिए हमारा टाइम हाजिर है।
3: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: 65 साल में अपने लोगों की सियासत नहीं समझ लगी
1: जी। 76 ईयर्स आपके हैं, 65 साल तो यंग आदमी के लिए होते हैं, तो मैं तो अब 76 का हूँ।
0: 76 के मैं 65 साल जो है ना वो एक्टिव बात कर रहा हूँ ना, कि यहाँ के जो हमारे पाकिस्तानी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तानी सियासत, उसकी आपको समझ नहीं लगी
1: जी। यहाँ पे वही मसला है जो हमने यहाँ पे उसका बेड़ा उठाया हुआ है कि हम जहाँ भी जाते हैं तो पाकिस्तान की सियासत करते हैं, हम अपने गांव की अपनी अना की सियासत करते हैं, हम किसी को फलते फूलते नहीं देख सकते, हम किसी की तारीफ का होते हुए नहीं देख सकते, वहां वो हमारा दुश्मन हो हमारा क्या। हम सबसे बड़ा जो आज क्वेश्चन उठ रहा है इंटरनेशनल लेवल पे वो ये है कि क्या आप मुसलमान भी हैं, तो हमारे पास उसका जवाब जो है हम ये कहते हैं जी हम कलमा तो पढ़ते हैं, हम मुसलमान हैं। कलमा पढ़ने से इंसान मुसलमान नहीं हो जाता जब तक उसके सारे जो डिमांड्स हैं वो भी साथ पूरी करनी चाहिए। आपका जो रेलिवेंट सवाल है उसका ये है कि यहाँ की सियासत जो है ये खाने पीने और दूसरों की साजिश, दूसरों के खिलाफ साजिश करने में जो लोग हैं वो आगे हैं। जिसके पास पैसा है उसको पॉइंट आउट किया जाता है कि इसके पास चार पैसे हैं, ये 3-4 साल हमारे साथ चल सकता है, उसको पकड़ गया ऊंचे से ऊंचा ओहदा दे दिया जाता है। और उसके बाद होता गया कि जब देखा गया अब ये थोड़ा सा सियासत में ज्यादा दिलचस्पी लेने लग गया तो उसको उतारा, उसकी जगह नए खिलाड़ी ले आए। तो यहाँ पे इस तरीके से ना ही पाकिस्तानी सियासत की हमें जरूरत है, यहाँ पे हमें सबसे बड़ी जो जरूरत है वो यहाँ के जो हमारे आने वाली नस्लें हैं जो ऑलरेडी आ चुकी हैं, अब हमारी तीसरी और चौथी नस्ल इस मुल्क के अंदर है, हमने उनके लिए कुछ नहीं किया, बल्कि हम जब हम जमीन दोज होंगे, जब हम अपनी कब्र में जाएंगे तो हमें उनसे बदवाएं मिलेंगी कि वो कहेंगे कि हमारे बड़ों ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। तो मैं तो अपने दोस्तों को अपने साथियों को ये कहूंगा कि आज तक आप औरत और मर्द का जो फर्क है वो नहीं मिटा सके, आप दीन इस्लाम क्या फैलाएंगे जब आपको इन चीजों का पता नहीं, जब आपके ऊपर हर किस्म की बात होती है तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, यहाँ पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन बने लेकिन उनको रजिस्टर्ड होना चाहिए, उनको बताना चाहिए इस गवर्नमेंट को कि भाई हम यहाँ पे ये तंजीमात बनाकर बैठे हुए हैं और हमारे साथ इतने मेंबर्स हैं, इसका कोई पैसा नहीं लगता।
0: पाबंदी करें और कानून की भी पाबंदी करें
1: जी। कानून की पाबंदी हम कैसे करें, हम जहाँ जाते हैं वहीं खाते हैं, बल्कि हम पास डस्टबिन होता है उसके अंदर हम खाने की गंदी प्लेट नहीं फेंकते, बल्कि यहाँ तो टेबल पे छोड़ जाएंगे या जो हड्डिये वगैरह वो टेबल के नीचे फेंक जाएंगे ताकि जिन्होंने दावत की है या जिन्होंने ये काम किया है उनके लिए जो है वो प्रॉब्लम्स खड़ी हो। तो ये मसाइल जो है ये हमारे सिर्फ इस बात पे है कि हमारा फोटो सेशन हो, हम लोग बैठे, और ये सबसे बड़ा मसाइल जो है ये कभी भी ठीक नहीं हो सकते, चाहे हम कितना क्यों ना रेडियो पे बोलें लोगों को बताएं। इस वक्त डेनमार्क की सियासत में सबसे बड़ा मसला जो है वो 6 मसले हैं, उन 6 मसलों के ऊपर ना हमारे कौंसलर हजरात बोल रहे हैं, ना ही हमारी सियासी पार्टियां बोल रही हैं जो हमारी पाकिस्तानी सियासी पार्टियां हैं, और ना ही हमारे जो पाकिस्तानी सियासी पार्टियां हैं जो कहते हैं कि हम डेनमार्क के अंदर बड़ा बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। ये उनकी भी बात है कि वो भी, उनको भी चाहिए कि इन मसाइल की तरफ अपने जो वोटर्स हैं, अपने जो इनके कारकुन हैं, उनको समझाएं कि भाई आप आगे जाके तो ये काम करें। अब मैं आपको ये बता दूं कि जब नेक्स्ट 4 ईयर्स के अंदर जब कम्युनल के इलेक्शन होंगे तो उस वक्त यहाँ पे बहुत ज्यादा तब्दीली आ चुकी होगी। आपको पता है कि यहाँ पे उन्होंने कानून को पाइपलाइन में डाल दिया कि जितने सीरियन है उनको फौरी तौर पर वापस भेजा जाए, वहां पे हुकूमत आ गई है इनकी। दूसरी चीज यह है कि यहाँ पे जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको उठाकर अब यहाँ पे ना रखा जाए, उनको कोसोवो में जो है ये पुराना हिस्सा योगोस्लाविया का कोसोवो वहां पे उन्होंने जेल बना दी है, वहां पे भेजा जाएगा। अब जो बंदा यहाँ पे जो साइलम सीकर है वो उसको वहां भेज दिया जाएगा और उसको कहा जाएगा कि जब तक तुम्हारा मसला हल नहीं होता तुम वहां पे जो जिनको डिपोर्ट कर दिया गया है उनको भी वहां जेल में भेज दिया जाएगा ताकि वो वहां जाके जेल काटे और उसके बाद वहीं से उनको डिपोर्ट।

0: تو شاہ صاحب اکثر ہم
1: مسائل کی بات کرتے رہتے ہیں، بہت سروس کی بھی بات ہوتی ہے، تو کیا یہ جو کمیون میں چلے گئے، ریجن میں چلے گئے یا کہ پارلیمنٹ کے الیکشن لڑتے ہیں، کیا وہ بہت سروس کی بات اپنی پارٹیوں میں نہیں کرتے؟
0: میں کہتا ہوں یہ لیک آف نالج، میں اسے معذرت کرتا ہوں کہ ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں، کیونکہ جب آپ دو جابس کرتے ہیں اور پھر تیسری جاب فیملی جاب ہوتی ہے جو آپ کے پاس ہوتی ہے، تو آپ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. آپ یقین کیجئے کہ میں اپنے پوتیوں پوتوں کو چھوڑ کر ویکینڈ میں ہر ایک جگہ، اس کے باوجود بھی میں ریڈیو پہ آ کے یہ بات کرتا ہوں. اب میں زیادہ لا فورس رے کی بات اس لیے نہیں کرتا کہ ہم نے پچھلے 10 سال سے یہ اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کیا ہے کہ اب مجبوراً ہمارے سیاستدان یہ کہنے شروع کر دیے ہیں. اور مجھے خوشی ہے کہ عدنان جیسے اور عزیز شان جیسے ینگسٹر جو ہیں وہ وقت دے کر آتے ہیں آپ کے ریڈیو پہ اور یہ بات کرتے ہیں. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ دوسرے جو میڈیا ہیں ہمارے وہ تو تعریفیں کرنے میں لگے ہیں، بابو جی فلانے نے یہ کر دیا، فلانی آرگنائزیشن نے کر دیا، فلانے بندے نے اتنا بڑا اکٹھ کر لیا. بھائی اس اکٹھ کا فائدہ کیا؟ جہاں پہ جہاں آپ رہ رہے ہیں وہاں کے لوکل بندے جو ہیں، ڈینش، دوسرے ممالک سے آئے ہوئے شہری، وہ اس کے اندر شامل نہیں، تو آپ کس کے آگے بین بجا رہے ہیں، آپ کس کو گیت سنا رہے ہیں؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ اس طرح کی محفلیں لگائیں جیسے امریکہ میں ہوتی ہے، انگلینڈ میں ہوتی ہے، فرانس میں ہوتی ہے، جرمنی میں ہوتی ہے، ہالینڈ میں ہوتی ہے، کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کریں.
1: ناروے میں بڑی سمپل سی بات ہے کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں یا اپنے ملک کے خلاف کو کام کر کے تو دیکھے. تو بعض لوگ جو اپنے ملک کے خلاف کام کر کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، جی ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم نے یہ لکھ دیا، ہم نے اس طرح کر دیا. تو شاہ صاحب یہ تربیت جو ہے یہ بچپن سے ہوتی ہے. وہ جو کہتے ہیں بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کی تربیت ہوگی وہ ٹھیک ہوں گی. اب یہ تربیت کا وقت گزر چکا.
0: دیکھیں جی اگلے دن بھی آپ کے ریڈیو پہ یہ بات ہو رہی تھی کہ اسکولس کے اندر جو ہیں وہ فولڈر جو ہیں، جو ماں باپ ہیں وہ اسکول کی میٹنگوں میں نہیں جاتے. تو یہ بالکل صحیح بات ہے، جب تک آپ اپنے بچے کی عادات کو نہیں جانیں گے کہ یہ دوستوں میں کیا کرتا ہے، اسکول میں پڑھتے ہوئے بچے بان ہیں ان سے لے کے، آپ ان کی جو رپورٹس ہیں وہ نہیں دیکھتے کہ کیا یہ بچوں کے ساتھ لڑائی کرتا ہے یا گمسم اکیلا بیٹھا رہتا ہے یا اس کو کیا پرابلم ہے. اگر آپ وہ اپنے بچوں کی باتوں کو وہاں جا کے، ان کے ٹیچرز جو ہیں وہ دوسرے ماں باپ ہوتے ہیں، وہ ان کی ٹریننگ کرتے ہیں، اگر آپ ذہنی طور پہ ان سے بات نہیں کریں گے تو آپ کو اپنے بچوں کے بارے میں بالکل نہیں پتا ہوگا. یہاں ہوتا کیا ہے، ہمارے لوگوں میں ہوتا کیا ہے، ہمارے لوگ ڈراماز دیکھتے ہیں، ہمارے لوگ کھانے پینے کے لیے سیاست کے سیکٹروں میں بھاگتے ہیں، مساجد میں بھاگتے ہیں کہ بھائی وہاں تو چلو آج تو کوئی نہ کوئی اجلاس ہو رہا ہے، اس کے بعد کھانے کو ضرور ملے گا. یہ چیزیں جو ہیں، میرے لوگوں کو، ساتھیوں کو دکھ تو لگے گا لیکن یہ حقیقت ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ جب ہم گھروں سے باہر جاتے ہیں تو ہمارے جو بچے ہیں جن کی 7-7, 8-8 سال, 10-10, 12-12 سال عمر ہے، وہ باہر کہتے ہیں جی کہ ہم دوسرے دوست کے گھر جا رہے ہیں، وہاں سے وہ کہتے ہیں جی ہم تیسرے دوست کے، اور لیکن وہ کہیں نہیں جاتے، وہ سینٹروں میں جا کے رات کو گھومتے ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں. تو کیا اس سے معاشرے میں جو ہمارے خلاف غصہ بڑھ رہا ہے تو وہ اسی کی وجہ سے ہے. پھر جب وہ بچے وہاں پہ زیادہ تر ہو جاتے ہیں تو وہ جو کرمینل ایلیمنٹس ہیں ان کے ہاتھوں میں وہ بچے جو ہیں کھلونا بن جاتے ہیں. یہ جو اسپل مشینیں ہیں، اسپل ہال بنے ہوئے ہیں، یہ جب سے ڈنمارک میں آئے ہیں اس سے 99.8% جو کرائم ہے وہ زیادہ بڑھا ہے. اور یہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ جوا کھیلتے ہیں اور اسے وہ پیسہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ پھر قرضوں میں آ جاتے ہیں. اس طریقے سے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو خیال میں رکھیں، احتیاط میں رکھیں. دن کے وقت ٹھیک ہے جائیں، رات کو جو مرضی ہو. میرے بچے پڑھتے تھے تو مجھے بلا کے کمیون نے کہا کہ تمہارے بچے جو ہیں وہ رات کو جو بچوں کی میٹنگز ہوتی ہیں، جو سوشل ڈانس وغیرہ ہوتے ہیں، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، تمہارے بیٹے آتے نہیں اس کے اندر، تم آنے نہیں دیتے. تو میں نے ان کو کہا کہ میں انٹرگریشن کا پابند ہوں، میں اپنے بچوں کو کرائم نہیں بنانا چاہتا، میں ان کو کرمنل نہیں بنانا چاہتا، میں یہ سب حربے جانتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کو کہے اوئے تم کھیلیں گو، तुम चिकन हो, ये थोड़ी सी बियर पियो, थोड़ी सी शराब पियो, या उसके कोला में शराब डाल दे, तो या उसके अंदर कोई नेकोटी कोई कोकीन वाला डाल दे। तो मैंने कहा मेरा बच्चा उस चीज के आदि हो जाए, मैं अपने बच्चों को सिर्फ कॉलेज तक स्कूल तक जाने की, और अल्लाह का फजल है जिन हमारे दोस्तों भाइयों ने इन चीजों पे नजर रखी है, आज उनके बच्चे जो हैं वो हाई स्टैंडर्ड है। आप खुद अपने बच्चों को देख लें, आप सारा टाइम रेडियो पे टक टक टक टक टिक टॉक करते रहते हैं, लेकिन आपके बच्चे जो हैं माशाल्लाह डॉक्टर्स और एयरपोर्ट पे और पायलट ये सारे काम कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने अपने बच्चों को नजर रखी है, अपनी कुर्बानी दी है, बहुत कुर्बानी हम लोगों ने दी है, तो वो उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ लिखे हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं ये मासूम जहन के होते हैं, इनको बताना होता है। हम ना अपनी बेटी को समझा सकते हैं कि बेटी इस्लाम क्या कहता है, दीन इस्लाम क्या है, ना हम अपने बेटों को समझा सकते हैं। सबसे बड़ी जो हम राशिस्ट हैं, मैं खुद भी राशिस्ट हूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि दूसरे राशिस्ट हैं, मैं खुद कहूंगा कि वो इसलिए कि जब मैं अपने घर में ही डिफरेंस पैदा करूंगा, मैं अपने बीवी अपने बहन भाइयों दूसरों से मैं नफरत करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो मुझसे बड़ा राशिस्ट कौन है? मैं इससे पहले कि मुझे फलाना राशिस्ट है, मुझे खुद अपने अंदर अखलाकी तौर पर अपने आप को सही करना चाहिए। जब मैं सही हो जाऊंगा तो मेरे घर में डोमेस्टिक वायलेशन नहीं होगा, तो मेरे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सही सुनेंगे। मैं आपको ये 100% गारंटी देता हूँ। बेशुमार लोगों ने मुझसे ये गिला किया कि शाह जी हमारे बच्चे, मैंने कहा यार तुम्हारे बच्चे जो हैं तुम उनके सामने बैठ के बात करते हो तो बड़े जोर से, वो साढ़े गाँव के चौधरी ने ओए फलाने नू मारी, डांगा मारिया, सोटियां मारिया, ये किया वो किया, तो ये चीजें जो है ये आम हो जाती हैं। इससे जो है बच्चे सुनते हैं तो वो समझते हैं कि ये हमारे हमारे जो पीछे हमारे घरेलू सिस्टम था ये सारा जंग से हुआ है। इसी तरह जब हम इस्लाम की बातें सुनते हैं तो उसके अंदर भी हमें बताया जाता है कि देखें जी इस्लाम तो तलवारों से जंग से ही जीती गई है, ये गलत चीज है। इस्लाम मोहब्बत का नाम है, प्यार का नाम है, इग्नोर करने का नाम है, इंसाफ करने का नाम है, इसके अलावा और कोई चीज है ही नहीं। टॉलरेंस जो है ये इस्लाम में सबसे बड़ी चीज है। आप कम्युनिकेशन करें, आप बात करें, गलती हो जाती है, मुझसे गलती होती है, मैं हजार गलतियां करता हूं, लेकिन जो गलती मुझे पता लग जाती है मैं उसी वक्त उससे माफी मांगता हूँ, क्योंकि अगर आप माफी मांग लेंगे तो आपको आपके अखलाक में आपके जहन में बहुत बड़ी बात आएगी।
1: बहुत बड़ी बात है शाह साहब। ये आखिरी सवाल करता हूँ शाह साहब, ये पार्किंग का मसला जो है ये बहुत ज्यादा बनता जा रहा है, फैलता जा रहा है, ये देख लें आप खुद शहर में जब जाते हैं, दूर तो लोगों को कोई मसाइल नहीं है लेकिन शहर के अंदर जो है ये बहुत बड़ा मसला बनता जा रहा है
0: जी। ये जिन्होंने बुनियाद रखी, जिन्होंने डिजाइन किया, जिन्होंने ये कहा कि जो वैश्वोगेर है ट्वाली से लेके स्टेशन से लेके और गौदस प्लस तक इसको बंद किया जाए, ये भी कम्यून ने डिजाइन किया। इसी तरीके से बहुत सारी जो सड़कें हैं, फिर इनको एक लालच ये है कि ये कम्यून के पास किए हुए हैं कि जो काउंसलर्स हैं वो ही पास करते हैं, इससे बगैर नहीं हो सकता। वो ये है कि आप जो है वो पार्किंग के जो है उससे पैसा कमाएं। तो अब आप ये हैरान होंगे कि एक आदमी दो गाड़ियां रख रहा है और वो फ्लैट का किराया वो 15-16 हजार वो फ्लैट का किराया दे रहा है कोपनहेगन में, और नीचे गाड़ियों को खड़े करने के लिए 3500 करोड़ फी गाड़ी से लेके एक बार जगह पे 4500 करोड़ तक सालाना जो है वो गाड़ी का भर के, मेरा ख्याल में इससे भी ज्यादा होगा।
1: ये है तो उसके बावजूद पार्किंग का मसला है
0: जी। वो पार्किंग यही है ना कि वो ये तंग कर रहे हैं कि ये लोग कोपनहेगन से मूव करें, कोपनहेगन से मूव करें। इसकी असलाह जो है ये बताना चाहिए जो हमारे काउंसलर हजरात हैं ये इनके पास है, हमारे जो पार्टी के सियासतदान हैं इनको पता होता है, हम लोग इनसे ये सवाल नहीं करते। क्योंकि बाद जो साइंटिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि कोपनहेगन जो है ये कुछ अरसे के बाद ये पानी पानी की सतह इससे ऊपर हो जाएगी, और अगर इसके पानी की सतह ऊपर होगी तो हमें इसको आबादी को पहले ही आस्ता आस्ता बाहर करना है। जैसे कि उन्होंने हाई ट्रांसफॉर्म का स्टेशन बनाया था और कहा था कि हम कोपनहेगन स्टेशन को वहां पे मूव कर रहे हैं, उसको बड़ा स्टेशन बना रहे हैं, लेकिन लोगों ने आवाम ने शोर डाला कि नहीं, हमारा जो पुराना है हम उसी को रखेंगे। तो ये सियासतदान जो है इनको आवाम को बताना चाहिए, जो काउंसलर हैं उनको आके बताना चाहिए कि हमारे पुराने कानून क्या थे, अब हमारे नए कानून क्या है। वो सिर्फ
1: शाह साहब, कहीं बंदा पावर के नशे में अपना शौक तो पूरा नहीं करता।
0: जी मैं कहता हूँ कि पावर के शो में सिर्फ फोटोग्राफिंग और ये जो अपनी पब्लिक में जाके बैठना, जी कि मैं काउंसलर हूँ, ये इनके ऊपर ये जो तगमा इम्तियाज इनको मिल गया या तगमा जरूरत मिल गया या जो सा भी तगमा आप कह दें इनको सजा दें, ये समझते हैं कि हमसे बड़ा काबिल बंदा ही कोई नहीं। हालांकि बनने से पहले ये लोगों के पास जाके तो वोट मांग रहे थे अपनी काबिलियत के सिर पर, नहीं रिश्तेदारी दोस्ती मुझे करें मैं ये कर दूंगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रिजल्ट ये है कि ये 4 साल कहते हैं कि जाओ दफा हो, बड़े तल्ले कराए साजे, बड़ा खजल किता है जे, हूं असी बन गए हैं तो हूं तुझे धक्के खाओ। ये चीजें
1: चलें शाह साहब, ये तो सियासत में होता रहेगा, लेकिन अगर वोट देते वक्त जो है ना, वोट देने वालों का भी तो कसूर होता है ना।
0: देखिए जी, वो कसूर इसलिए होता है कि वो ये समझता है कि हो सकता है कि ये दूसरों की तरह ना हो सकता है कि ये बंदा जो है शरीफ
1: उन्नीसो, हमारा रुझान कम होता जा रहा है ना कि हम डेंशों को वोट नहीं देते।
0: देखिए जी, मेरा ख्याल में कि 70s और 80s में हम लोग देते थे डेंशों को वोट, हमारे में लुबना आई, फिर एक दो और पाकिस्तानी आए, फिर चौधरी विलायत एल्बर्टसन से पाकिस्तान के कोपनहेगन की सियासत में आ गए, इस तरीके से फिर हमारी सियासत वहां पे हुई। लेकिन उससे पहले जो सियासत थी वो डेंशों की सियासत थी, और डेंशों को हमने जब हमें वोट मिलने का हक हुआ तो हमने उनको दिया, तो बड़े अच्छे हमारे मुतालबे थे, बड़े अच्छे लोग थे, हमें क्राइम रेट बहुत कम था। लेकिन उसके बावजूद हमने जब इस मुल्क के कानून की और आइन की दचियां बकेर दी, तो इसके मुजरम हम लोग खुद हैं। हम ये नहीं कह सकते कि डेनिश रैसिस्ट हैं, डेनिश रैसिस्ट नहीं, डेनिश रैसिस्ट होते तो जैसे
1: आखिरी दो लफ्जों में बताएं कि जो कानून में लूप होल थे उनको हमने बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया।
0: जी वो तो अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो हमने ऐसे ऐसे किए हैं कि हमारी लुक्सस गाड़ियां, लुक्सस वेले पाकिस्तान में खड़े हैं, वो तो यहाँ पे हम कहते हैं जी कि ये लोग ऐसे हैं ऐसे हैं। हमें इन्होंने
1: शाह साहब एक बार इस पर खुलकर प्रोग्राम करेंगे अगले हफ्ते। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।
1: सामान नाजरीन, ये थे सैयद तकी हुसैन बुखारी शाह साहब, उनसे बात करनी थी लेकिन हमारे मेहमान जो हैं वो इंतज़ार में थे, हमने ये बात करनी थी। सामान नाजरीन हमारे साथ साथ रहिएगा।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے 1:21 ہوا چاہتے ہیں 31/5/2026 کا پروگرام ہے سامعین ہمارا کام ہے انفارمیشن دینا جہاں سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے آپ کوشش کرتے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں اس وقت ہمارے تجزیہ نگار عدنان علی امین ہمارے ساتھ ہیں یہ بھی بہت سٹڈی کرتے ہیں بہت ساری اخبارات پڑھتے ہیں بہت ساری میل لکھنی پڑتی ہیں پھر میلز کے جواب بھی آتے ہیں تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا کہ جس طرح مزے سے بیٹھ کر آپ گاڑی میں سن رہے ہیں گھروں میں بیٹھ کر سن رہے ہیں اس کے پیچھے بہت زیادہ محنت ہوتی ہے تو عدنان ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں
1: وعلیکم السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں راجہ صاحب
0: اللہ کا احسان ہے آپ ٹھیک ہیں بچے ٹھیک ہیں
1: اللہ کا شکر سب خیریت سے سب ٹھیک ٹھاک ہیں
0: تو عدنان سب سے پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ عمران محبوب کی جو مسز ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور راجہ بابر فاروق خان کی بھی جو ہے وہ دونوں یہ ان کی بیوی جو ان کی بہن تھی تو بڑے آپس میں یہ اٹیچمنٹ تھی ان کی تو یہ دونوں بڑے پریشان ہیں بابر بھی عمران بھی تو انشاءاللہ وہ ابھی بتا رہے تھے اپنا عبید صاحب کے کل ان کا نماز جنازہ ہوگا عیسائی مسجد میں 2 بجے زور کی زور کا ٹائم رکھا ہے سامعین ناظرین آپ یہ سن لیں کہ کل جنازہ ہوگا ابھی تک ڈیفینیٹ انہوں نے کوئی اسٹار آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا لیکن جو ہمارے پاس انفارمیشن تھی وہ ہم نے شیئر کر دی
1: صاحب یہ تو ایک دنیا کا بڑی افسوس کی بات ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمت دے اور دو چھوٹے بچے بھی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ماں کا سایہ تو بہت ضروری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بس ان کو ہمت دے اور اللہ تعالیٰ بس یہی ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اس کو صبر دے اور اس میں ماں نہ کچھ کہہ تو سکتا نہیں ہے
0: جی ہم سب ہماری ٹیم آپ سب ہمارے کمیونٹی فورم کی طرف سے سب کی طرف سے ہم جو ہے مشترکہ طور پر ان سے افسوس کرتے ہیں
1: یہ تو ہے وزیر صاحب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس کو صبر دے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکل ویلے سے باہر نکالے اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر میں یہی کہوں گا کہ یہ تو ایک ایسی بیماری ہے جس کا بڑا پیسہ بڑی دولت کیا کہتے ہیں لگ رہی ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ یہی تو ایک چیز تھی جس کے اندر ہمارا ایک جو ڈپٹی میئر عرفان گیلانی اس کی بیوی کو بھی ہوا تھا ایک چیز کا تو وہ بھی اس صبر سے گزرا ہوا ہے انسان کو کیا کہتے ہیں پتا ہوتا ہے اور عمران تو وہ بندہ ہے جو ہر سال کیا کہتے ہیں جو پاکستان کے اندر واحد کینسر کا اسپتال ہے جس کو بگیسٹ کینسر کا علاج کرتا ہے اس کے میں بھی وہ ٹریبیوٹ کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ اب اس کو کیا کہتے ہیں صبر دے اور ہم اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں اس کی بیوی کا اگلا سفر جو ہے وہ آسان ہو
0: کی منظر نشان کرے انشاءاللہ اللہ پاک ان کو صبر دے ان کو بچوں کو صبر دے وقت گزر جائے گا انشاءاللہ وقت صابر ہوتا ہے اللہ پاک سب کے لیے بہترین اور آسانیاں پیدا کرے چلے آتے ہیں عدنان حکومت کی طرف حکومت بن گئی ہے یا ابھی بنے گی
1: صاحب وہ تو بدہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ اب جو حکومت ہے وہ اپنے آخری سٹیج پہ آ گئی ہوئی ہے اور میرے خیال سے وہ بھی ایک دو دن اس ہفتے کے اندر اندر اس کی اناؤنسمنٹ ہو جائے گی الیسٹ کہ کوئی بگ سرپرائز نہ آ جائے تو ورنہ تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ گورنمنٹ جو ہے نا اس ہفتے اناؤنس ہو جائے گی اس کے اندر تھوڑی کم اپ پیسی چل رہی ہے اور وہ اس لیے چل رہی ہے کہ میرے خیال سے اس کے اندر جو اندر سے تو کچھ باہر آ نہیں رہا ابھی تو یہی ہے کہ جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ بنتی جا رہی ہے پھر اس کے اندر بیسیکلی مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو لاسٹ لوکی ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے تھوڑا بہت اس کا دوسرا ویریا ہے اور انگلش لسٹنگ کا اپنا ویریا ہے تو میرے خیال سے اس کے اندر کوئی کمونلی کے صورتحال سے کوئی مسئلے ہیں جو ابھی تک طے پا نہیں دے مگر ان شاء اللہ تعالیٰ وہ بھی میرے خیال سے ایک دو دنوں میں طے پا جائیں گے تو میرے خیال سے کون لو کہ دن سے پہلے ہی کیا کہتے ہیں گورنمنٹ بننے کا کیا کہتے ہیں بننے کا صورتحال کا کیا کہتے ہیں چانسز ہیں
0: تو کیا ہی کہیں غیر ملکی بھی ڈسکس ہو رہے ہیں سارے پروسیس میں
1: जी, आप देखें ना कि गाड़ी विंस्टा का जो एक जो टीम है उसके अंदर उनकी जो डिप्टी चेयरमैन है पार्टी की, वो तो मुसलमान है ना, उसका तो अफगानी बैकग्राउंड है ना, तो ऑब्वियसली वो पावरफुल है और उसका नाम तो डेफिनेटली टेबल पे जरूर होगा कि वो वन ऑफ द टू मेरे ख्याल से गाड़ी का मिनिस्टर बनने में उसका काफी चांसेस हैं। ये कोई डाउट नहीं है कि वो बन सकती है। ये एक एक किस्म का आप कह लें कि उसके काफी चांसेस हैं और वो बच भी सकती है। उधर से ये भी कह सकती है कि लास्लुकी की पार्टी जो है उसके अंदर भी दो हैं जो जो जो बन सकते हैं, एक तो मोना मोना का रूबीन है और वो एक उनका जो पॉलिटिकल बेहस वो मोहम्मद आना, वो भी फानी बैकग्राउंड का, तो उसके भी चांसेस हैं कि वो उसके बन जाए। तो इन दोनों के बंदा कह सकता है कि 50-50 चांसेस हैं कि ये बन सकते हैं। मगर बिगेस्ट कंसर्न ये है कि बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट बनेगी ना इसके अंदर डेफिनेटली कुछ कुछ चीजें आएंगी जो सरप्राइजिंग भी होंगी, नहीं सरप्राइजिंग भी होंगी, गैर मुल्की के बारे में भी डेफिनेटली कोई ना कोई चीजें जरूर आएंगी। अब देखते हैं कि उनके बारे में क्या आता है।
0: नहीं आता है तो आपको पता है कि पेचकस में तो हमेशा पेच को जो है वो टाइट ही किया जाता है, ढीला तो नहीं होता।
1: अगर सब देखा जाए तो हर चीज टाइट की जाती है मगर नरम भी की जाती है। और आप देखें ना कि हम जो गैर मुल्की होते हैं, मैं आज आपको एक बात बताता हूँ कि एक बड़ी अच्छी एक ब्रेकिंग न्यूज है आप लोगों के लिए। मैं व्यूअर्स को बताता हूँ कि कल मैं एक पढ़ रहा था खबर के कल ही आई थी कि ये जो चोरियां वगैरह होती हैं स्टोरों में और ये जो होती हैं उसके अंदर मैंने एक बड़ी दिल दिल कहानी पढ़ी कि रोमानिया के नंबर एक पे थे। मगर शॉपिंग ये शॉक ये था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है और जिसके ऊपर सबसे ज्यादा किया जा रहा है वो नंबर टॉप 5 के अंदर थे और वो थे यूक्रेन के ब्लॉक। जब ये खबर मैंने देखी ना तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा, मैंने फिर उस पर कॉमर्स भी किए, मैंने लिखा भी, मैंने कहा ये मुझे एक बात आप एक्सप्लेन करें, आप पाकिस्तानियों के पीछे पड़े हुए हैं, ईरानियों के पीछे पड़े हुए हैं, इराक के पीछे पड़े हुए हैं कि, मगर आपने ये देखा कि जिस पे आप सबसे ज्यादा पैसा लगा रहे हैं, जिसको आप हर चीज की सहूलत दे रहे हैं, वो टॉप 5 में है चोरियां करने में। ये देखे राजा साहब वो टॉप 5 में है और वो टॉप 5 में ही रहेंगे।
0: तो इसका मतलब है कि जो
1: और
0: जुर्म करते हैं उनको वीज़ा भी देते हैं, रिहाइश भी देते हैं, सारी चीज़ें देते हैं, तो जो सीधे काम करते हैं वो अभी तक अपने जो है परमानेंट वीज़े के लिए बैठे हुए हैं लोग।
1: देखिए ना दादा सब, यही एक यही एक क्या कहते हैं रानी की बात होती है कि बंदा जब देखता है ना इस चीज को तो बंदा हैरान होता है कि ये देखिए जिस पे आप इतना पैसा लगा रहे हैं, जिसको आप क्या कहते हैं सर्च कर रहे हैं, उस पे आप क्या कहते हैं वो यही कर रहे हैं। मैं आपको एक, आप तो अभी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ, शायद आपके हवाले से गया हो। परसों 2-3 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है PHA की, आप हैरान होंगे, उसके अंदर इनने सीरियसली कह दिया कि ईरान एक किस्म का हमारे लिए थ्रेट हो रहा है, कि ईरान कुछ भी कर सकता है किसी टाइम। अब मैं बड़ा हैरान हूँ और डेफिनेटली बड़े लोगों ने उस बात पे फिर ईरान की एम्बेसी ने ऑब्वियसली स्टेटमेंट तो दी है, मगर मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा, मैंने उस पर कॉमर्स कर दिया। मैंने कहा ये जो मैंने नहीं किया, पहले लोगों ने इस बात पे कर दिया, उन्होंने कहा कि जब PHA ने ये बात की है कि ईरान के बारे में, मगर आप भी इमेजिन हो सकते हैं कि ईरान के पीछे कौन होगा इस रिपोर्ट को कहने के लिए कि वो बिगेस्ट थ्रेट बन रहा है पूरे यूरोप के लिए इंक्लूडिंग डेनमार्क के लिए। आपको भी पता है उसके पीछे किसने वो रिपोर्ट दी होगी, दो ही मुल्क हैं दुनिया में दे सकते हैं। तो वो एक नया डिबेट शुरू हो गया। वो मैंने कहा कि देखिए ठीक है कि एक इंसिडेंट हुआ था कुछ देर पहले जब जिसमें रानी कुछ इन्वॉल्व थे, मगर कहा मैंने कहा ये सबूत तो नहीं ना कि वो कोई जाके कोई चीज करने लगे आ रहा है। तो इस डिबेट को देखें कि किस तरह से है। और मैं यही कहता हूँ कि जो होते हैं ना सूरत हाल, जिस तरह से अब ये 4-5 दिन पहले हमारी ईद से पहले भी वो जो ओहूस में वाकया हुआ, उससे पहले कोपनहेगन में मस्जिद पे वाकया हो गया, वहां वो छत पे भी चढ़ गए, या ओहूस में हो गया सर, एक दो और हैं। और अल्लाह का शुक्र ये है कि जो अब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया, मैं व्यूअर्स को बता दूं कि बंदा अंदर ना होता मस्जिद के दिन उस दिन, तो उसका डैमेज जो होना था वो किसी को नहीं पता कि कितना बड़ा होना था। तो इसलिए बंदे को ये सोचना चाहिए कि अब जो डिबेट्स है ना वो बड़े नेगेटिव, जो हम कहते थे ना कि इसका कॉन्सिक्वेंस नहीं होना, मगर कुछ लोग उसको उल्टा कॉन्सिक्वेंस लेने लग पड़े हैं और उसको क्या कहते हैं चीजों को करने लग पड़े हैं। तो ये एक क्या कहते हैं कुछ मुसीबतें हैं जो हैं। तो इसीलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों को चीजों को देखना चाहिए और आर्गूमेंट करना चाहिए। ऑब्वियसली उस टॉप 10 में ईरान और इराक का नंबर है चोरी में, मगर ये मतलब नहीं है कि खाली मुसलमान करते हैं। हम जिनको सबसे ज्यादा पैसा दे रहे हैं, जिनको सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, वो देखें वो टॉप 5 में, मेरे हाथ वो नंबर 2 पे हैं अलैस चोरियां करने में इस मुल्क में इस वक्त।
0: अजान, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो कम्यून्स के इलेक्शन होते हैं लोग हिस्सा लेते हैं, लोगों का ज़्यादा गैर मुल्कियों का रुझान आस्ता आस्ता बढ़ रहा है कि जिस जिस मुल्क से आए हैं उन्हीं लोगों को जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको वोट दिए जाएं। अब डैनिशों को वोट अगर देने की जब ये तसर बढ़ गया तो बाकी लोग भी पार्टियों को गैर मुल्कियों के लिए या जो जो उनकी पार्टियों में काम नहीं करते, तो इसका मतलब है कि जब आप जैसे लोग हर वक्त मेहनत करते रहते हैं, जो बंदे कहते हैं जी हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम क्या करें, हम अपने मामलात भी देखने होते हैं, तो आप भी तो अपने मामलात दे रहे हैं, आप भी बच्चों को भी देख रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, सियासत को भी देख रहे हैं और सारी सियासत पर निगाह भी रखी हुई है। अगर आप काम कर सकते हैं तो दूसरे भी काम कर सकते हैं, लेकिन खाली मेंबर बनने के शौक तक सियासत करनी चाहिए या प्रैक्टिकली होना चाहिए?
1: राजद साहब, आपको ना इंसान को ना प्रैक्टिकल होना चाहिए और हर एक चीज का ना एक एक एक एजेंडा होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं कहने के लिए नहीं हूँ, मैंने बड़ी जगह देखा और मुझे 2-3 दिनों से पता भी चल रहा है और कुछ इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखें, मैंने आपको एक चीज कही थी नवंबर में, मैंने अपनी कोई साइड छोड़ी नहीं हुई, मैंने कोई अपना क्या कहते हैं किसी को, मैंने उस वक्त भी कहा था कि आप वोट सोच समझ के देना। मैंने आपको जैसे अभी पहले कहा है कि मेरी बारे में बड़ी सारी अफवाहें फैल गई हुई हैं और अब
0: ये
1: मुझे
0: अफवाहें
1: ये
0: फैल गई
1: कि
0: हैं कि पटाखा होने वाला है।
1: ये पटाखा तो वो देखे, वो तो रद्द सब पटाखा तो ही होगा ना कि दूसरा बंदा क्या कहते हैं दिखेगा कि बंदा पटाखा बजाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि पटाखा तो ताँ बजाना है ना कि बंदे ने कोई काम नहीं करना। हाँ बस ये हो सकता है कि कोई ना कोई चीज हो जिसके अंदर बंदे की बातचीत जा रही हो, मगर ये आप इंफॉर्मेशन फैला रहे दूसरे के बारे में कि वो शहर छोड़ के भाग गया है, वो अपना काम छोड़ के भाग गया है, वो ये कर गया, वो ये कर गया। तो आपको ये देखना चाहिए जब वो बंदा आपके सामने आएगा, आपके आगे आएगा, तो आप उसको क्या जवाब देंगे? अब मैं आपको बता दूं, ये ईद की नमाज थी, मैं ईद वाले दिन गया मैं नमाज पढ़ने, मैं गया पहली जमात थी सुबह 7 बजे, मैंने कहा नहीं मैंने 7 बजे जमात में नहीं, मैं 9 बजे की जमात में गया। 9 बजे की जमात में पहले वाले भी लोग थे उधर, दूसरे भी थे, तीसरे भी थे, मेरा बच्चा बीमार था घर में, उसको नहीं थी, उसकी तबीयत नहीं थी ठीक, वो मेरा इंतजार कर रहा था वहां पे। लोग मुझे लोग पूछने लग पड़े, ओ भाई बेटा तुम शहर छोड़ के क्यों चले गए हो? मैं क्या गल पाई जी, और मैं क्या शहर छोड़ गया, और नहीं तू सुने तू खोए चला गया, तू रास की चला गया, वो ऐसे चला गया। मैं कहा एक काम मैं करता हूँ, ये पुलिस स्टेशन हमारे पीछे ही है ना, मैंने कहा, कहते हाँ, मैं कहा मैं वो वहां पुलिस स्टेशन चला हूँ, कहते क्यों, मैं कहा मैं पुलिस स्टेशन में जाके ना फाइल अपील करने लगा हूँ, क्या कि मुझे ना 4 दिन के मोहलत दें कि मैं 16 बोर्ड पूरे एडमिशन में लाना चाहता। वो कहते क्यों, मैंने कहा क्योंकि मैं बोर्ड पे अपना एड्रेस लिख दूंगा कि नेक्स्ट टाइम जिसने पूछने ना कि मैं कहाँ रहता हूँ आके मेरे घर का लेटर बॉक्स पढ़ के चला जाए। वो लोग हंसते लग पड़े, मैंने कहा मैं अब क्या करूँ, जिससे ये फॉर्म फैली हुई है आप उससे जाकर पूछे। मैंने कहा मैं जहाँ पे इलेक्शन के पहले भी था मैं वहां पे ही हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी सेहत दी सब कुछ हुई, मैं वहां पे हुआ तो मैंने वहां ही एड्रेस से इलेक्शन फिर दोबारा लड़नी। मैंने कहा मुझे कोई असर नहीं पड़ता कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा, कौन किसकी टांग खींच रहा है, कौन क्या कर रहा है। मैंने कहा मुझे उससे कोई तलक नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैंने 2025 में हारूं रा जीतूं, जो मैंने काम करने हैं वो मैंने काम करने हैं। वही दूसरा राजा साहब मुझे एक बंदा पूछता, कहता है कि तुमने ये कुछ काम कर दिए हैं, तुम कैसे कर रहे हो। मैंने कहा मैं क्यों बताऊं मैं कैसे कर रहा हूँ। मैंने कहा जब इलेक्शन का रिजल्ट आएगा आप पूछ रहे ना किसने कौन सा काम किया, कौन ने किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया। तीसरा बंदा है वो कहता है, कहते एक बंदा है उसकी अपनी पार्टी में लड़ाई है। तो मैंने कहा वो जाकर खुद निपटे ना अपनी पार्टी में, मुझे क्यों कह रहे हैं उसकी पार्टी में लड़ाई है। मैंने कहा आपको मैं वजह बता देता हूँ उसकी लड़ाई क्यों होगी। वो लड़ाई इसलिए होगी कि वो अपनी पॉलिसी फॉलो कर रहा होगा, पार्टी की दूसरी पॉलिसी होगी। तो मैंने कहा उसका मसला ये होता है कि फिर बंदा जितनी देर तक बैठेगा नहीं उनके साथ, बातचीत नहीं चलेगी। मैंने कहा आपको पता है कि 50% जो मेरी पार्टी है, ये जो रेड पार्टी है, मैंने कहा मैं आपको आज एक ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ, मैं आपको भी दे देता हूँ क्योंकि मैंने लोगों को बता दिया। मैंने कहा मुझे ये डिसीजन नहीं थी पसंद, ये ब्लो ब्लॉक के साथ जाते, ब्लो ब्लॉक को बॉम्बे तक पहुंच देते। वो कहता वो क्यों। मैंने कहा क्योंकि जब हम रेड ब्लॉक के वोट लेके आए और हम रेड ब्लॉक के, तो हम ब्लू ब्लॉक का परफॉर्मेंस तो कैसे बना सकते हैं। मुझे एक्सप्लेनेशन बताए कि एक बंदा जब पॉसिबिलिटी है, बंदा थोड़ा इंतजार करता है, बंदा 13 घंटे में फैसला करके कहता है ठीक है ब्लू ब्लॉक को दे दो। ये तो देखो कि 2 दिन जो चले जाओ, 3 दिन चले जाओ, अब गवर्नमेंट जो है 68 दिन हो गए हैं, क्यों नहीं बन रही, क्योंकि उन्हें इंतजार किया, उनमें सब्र था सब में। मैंने कहा ये तो ऐसे था जैसे गाड़ी छूट रही है किसी की, तो बंदे ने 13-14 घंटे में फैसला कर लिया। मैंने कहा ये फैसले जो होते हैं ना कभी कभी बंदे को सोच समझ के करने पड़ते हैं।
0: लेकिन होता है सियासत में दुड़ाते भी हैं, दुड़ा के थकाते भी हैं ना।
1: राजा साहब मैं आपको एक बात कहूं, आपने जो सवाल किया उसका जवाब मैं यही दूंगा कि मैंने किसी को नहीं देना, मगर आपने जिम्मेदारी ली है ना तो आप उस जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश करें। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, इस बार बड़े लोगों को अंदाजा हो गया हुआ है कि कैसे वोट लिए जाते हैं और कैसे वोट किए जाते हैं। और वही क्या कहते हैं जो होता है ना, क्या कहते हैं डिसीशंस और फैसले, उस पे क्या कहते हैं बड़ा बंदा गौर करता है और बंदे को उसकी चीजों को देखना पड़ता है।
0: चलें अदनान, आप हमेशा ब्रेकिंग न्यूज़ भी देते हैं, खबरें भी देते हैं, तो इंशाल्लाह आपसे राबता रहेगा, अगले प्रोग्राम में खुलकर बात करेंगे।
1: ठीक है सर, आपकी मेहरबानी सर,
0: बहुत शुक्रिया
1: अल्लाह
0: अदनान।
1: हाफिज, अल्लाह।
0: सामान नाज़रीन, ये थे अदनान अली अमीन, जिन्होंने आपसे कुछ बातें शेयर की, आप भी इस पर गौर किया करें। समय हमारा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना, जहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है आप लोगों के साथ रिलेटेड होती है, चूँकि ये लोकल ख़बरें होती हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए, लोकल प्रोग्राम में लोकल चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सब नाज़रीन, हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, आप अपनी राय देना चाहते हैं तो दर आपकी आवाज़ का टाइम आपके लिए हाजिर है।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: कि कौन सी हुकूमत आ गई है, कौन हुकूमत में बैठा हुआ है, कोई वजारतें हैं, ज़ाहिर है इनकी भी बंदरबांट तो होनी है, सियासी बंदरबांट जिसे कहते हैं, मफादात की बांट होती है, लोगों की पार्टियों के जो मंशूर के वादे किए होते हैं वोटर सपोर्टर से, उनके तहफात का भी ख्याल करना होता है। तो हमने कहा क्यों ना पूछें कि जिनकी हुकूमत में ज़्यादा बातें की गई, जिन लीडर को ज़्यादा सामने रखा गया, जिस लीडर पर बहुत सारी बातें हुई, लीडर नाराज़ भी हुआ, फिर दोबारा वापस आ गया, अब दोबारा हुकूमत बनने जा रही है, तो ज़ीशान अली मॉडरेट एतदाल पसंद पार्टी के वो बिस्तुलसा में बैठे हुए, उस बिस्तुलसा में बैठे हुए, तो हमने कहा उन्हीं से जानते हैं कि खबर तो उनके पास होगी। ज़ीशान आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
1: जी अस्सलाम वालेकुम साहब, आपको सब सुनने वालों को और शुक्रिया जी दोबारा से बुलाने का।
0: शुक्रिया आपका, आपने टाइम निकाला छुट्टी वाले दिन, चूंकि आप उस्ताद हैं तो आप जो है वो सियासत के भी उस्ताद जो है वो होना चाहिए आपको, सियासत के वो पढ़ानी चाहिए आपको, सियासत भी बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों के इम्तहान भी होते हैं, बहुत सारे बच्चों के इम्तहान हो गए और कुछ पर्चे अभी रहते हैं, छुट्टियाँ फिर आ जाएगी।
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: तो आपको जो है वो आपकी जो उस्तादी है क्या बताती है?
1: उस्तादी अल्लाह का शुक्र है, जिस तरह आपने बोला जो जो जो वर्किंग उस्तादी है वो अल्लाह का शुक्र है, वो काफी अच्छी जाती रही है। जैसे आपको पता चला होगा मैं तो एक हफ्ता वो नौ माह तो नहीं है, उधर भी एक स्कूल में हफ्ता गुजार के हैं, उधर भी एग्जाम्स चल रहे हैं, तो वो तो काफी अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और आराम सुकून है। और ये जो सियासी सियासत में उस्तादी चल रही है ये तो आप हम सभी देख रहे हैं
0: इस दफा। आपने कहा कि स्कूल चल रहा था, ये कहें जो सियासी बेसकूनी है।
1: हाँ बेसकूनी तो है मगर वो बस अंदर जब पता होता है हमें कि इतना टाइम लगना है इसलिए हम स्कूल से बैठे हुए थे। आपको याद हो शुरू में भी बोला था कि जब इलेक्शन खत्म हो गए थे कि ये वाला रिकेंग्स फॉर हैंडलिंग एजेंसी है ये जाएंगी रिकॉर्ड टाइम पे जाएंगी, अब तो रिकॉर्ड से भी काफी आगे निकल चुके हैं ये लोग, इतना ज्यादा आगे जाएगा ये उम्मीद नहीं थी, मगर ये भी है कि लास्ट टाइम हमारी जब बात हुई थी आपको याद होगा मैंने आपको तब भी बताया था कि वो एक दफा ट्राई करेंगे कांग्रेस ने सोया चेंज करने की, बीच में दो हफ्ते वो भी फोर्स ऑन फोर्स उनको बनाया उन्होंने कि ये भी चेक कर लो ये हो सकता है कि नहीं, वो भी दिखा दिया मतलब कौम को कि वो भी नहीं हो सकता जी, ब्लू नहीं हो सकता, तो ये जो बन रहा है यही बनेगा और किस हद तक बनेगा और कैसे बनेगा ये अब इंशाल्लाह अंदर और बाहर दोनों तरफ से खबरें हैं कि बस इस हफ्ते देखें, उम्मीद है कि फाइनलाइज हो जाएगा।
0: फाइनलाइज हो जाएगा। ज़ीशान अपना लगता तो है कि आपके पार्टी के चेयरमैन जो हैं वो वज़ीर ख़ारजा ही बनेंगे, क्योंकि मैच्योर आदमी है, उस पोस्ट पे काफ़ी अर्सा काम कर चुके हैं, तो इनकी जो ज़ाहिर है बातें बातचीत चल रही होती है मुल्कों की, लेकिन ये भी सुनने में आ रहा है कि आपकी पार्टी में कोई मुसलमान वज़ीर बनने जा रहे हैं।
1: मुसलमान तो एक ही है अपना जो में बैठा हुआ है, मुझे तो अभी तक फूड नहीं आया, कल मुलाकात हुई थी नहीं, हमारे उसमें दो तीन है, मुश्किल लग रहा है राजा साहब क्योंकि अगर आप देखें ना इस दफा शायद आपने भी वो खबर पढ़ी हो, वो बात बिल्कुल सही है कि मिनिस्ट्रियां ये लोग चाह रहे हैं कि कम हो, मेरे ख्याल से इस दौर में 25 थी, 25 से उन्होंने मिनिस्ट्रियां कम करनी है और फिर उसके बाद आप देखें कि अब चार पार्टियां जिन्होंने उनको तकसीम करना है आपस में, तो ये है कि बड़े बड़े प्रोफाइल्स बैठे हुए हैं चारों पार्टी में जिन्होंने जो मिनिस्टर बनना चाहते हैं, हर पॉलिटिशियन का ख्वाब है जी मिनिस्टर बनना, तो लग तो मुश्किल रहा है मगर देखें, कल आया हुआ था और हमारा हम लोगों ने भी मीटिंग पे था तो उस तरह से अभी खुल के बात नहीं हुई मगर यार किसी को कुछ पता तो है नहीं, देखें
0: बड़े राज में रखा जा रहा है। रेडिकल वेंस्टा की जो है ना उनको भी वजारत के चांस, दो वजीर हमें बनते नजर आ रहे हैं लेकिन बनाना तो पार्टी ने है,
1: बनाना पार्टी ने जो और सुनिया नाव है जो हमारी उधर रेडिकल वेंस्टा में है उन्होंने माशाल्लाह देखे ना, मैं 15-20 साल तो मुझे हो गया उनको फॉलो करते जानते और मेहनत करके वो फॉर्म जो बनी हुई है उसका तो हक बनता है कि रेडिकल वालों को दो तीन मिनिस्टर की अगर पोस्ट मिल जाए, दो तो चले मिलेंगी मिलेंगी, एक उसकी होनी चाहिए उसमें, ये तो उम्मीद यही है।
0: लेकिन ये जो सारी सियासी लेन देन हो रही है तो उसमें कहीं गैर मुल्की भी हैं या नहीं कानून कायदे के लिहाज से?
1: साफ सी बात है जी, मैं आपको बड़ा ढके छुपे लफ्जों में आपसे ना कभी अपने अपने मतलब जो लिसनर हैं उनसे भी ढके छुपे लफ्जों में नहीं बोला, कल मेरा सवाल ये भी था अपने

0: मीटिंग में कि ये जोन सा उन्होंने ये पॉलिसी क्या है, ये जब भी इलेक्शन होते हैं बहुत फीला करता है। आप सोच रहे हो 3-4 हफ्ते जो इलेक्शन है बहुत फीला करता है। मैं कहा अब जब फायरिंग हो रही है तो क्या, उसमें उसने भी बोला, कहता है कुछ कोई मतलब एक वो आगे लेके चल ही नहीं पाता उजलेंगी पुलिस को। और ये मेरी हमेशा शुरू से, अगर आपको भी याद होगा, मैं यही बोलता हूँ कि हमें थोड़ा सा उजलेंगी पुलिस से बढ़कर भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि उजलेंगी पुलिस की इस पर बड़ी लॉक हो चुकी है। क्योंकि जितनी देर तक सुशील मुखर्जी बैठी हुई है और वो अपनी शाम उजलेंगी पुलिस कर रहे हैं, उनके साथ ब्लू पार्टीज मिल जाती हैं, उनकी अक्सरियत बन जाती है। मतलब उजलेंगी पुलिस में गरीखेल, हम लोग बोलते रहे जो भी बोलना है, वो ब्लू के साथ भी एक्सरियत बन जाती है। और मेरे फादर मतलब वो नहीं आ रही इस के इधर तक के ना कि इस पे इसको ईज किया जाए। इवन दो कि अब गवर्नमेंट बैठने लगी है, अगर गवर्नमेंट में बैठे सिर्फ के साथ बैठे, गरीखेल के साथ बैठे, मुरारने के साथ बैठे, मगर वो इस चीज पे बड़ी अड़ी हुई है काम उजने के पुलिस पे, और उस पर उसको पूरी ब्लू ब्लॉक का भी सपोर्ट है। उसको चेंज करना बड़ा मुश्किल है। इस वक्त कोशिश हमारी तरफ से जा रही है, मगर जिस तरह आप देख रहे हैं शायद अचीव की अब बहुत चीज कह गई है जी, वो भी क्लाइमेट और पीयूष वैसे की बात कर रही है, अड़खेल विंस तो बैठे हुए हैं, उनका भी क्लाइमेट पे ज्यादा जोर है, एजुकेशन पे ज्यादा जोर है, उर्लेनिंग पे उस तरह से जोर है नहीं। तो
1: लेकिन
0: हमें
1: पार्टियों में फिर वो
0: इसकी
1: लर्निंग तकड़े वो जो है ना, वो कैंडिडेट नहीं है या तकड़े मेंबर नहीं है ना।
0: असल में जी अंदर वही देखे ना, अंदर तो उस तरह आया हम कोई भी नहीं, उस हम में से अपनी किसी की पार्टी में आया नहीं। आप 3-4 आए हुए हैं, कोशिश करते हैं, मगर जितने तक सुशील मुखर्जी के साथ मुझे नहीं कोशिश का बड़ा मुश्किल हो रहा, क्योंकि वो हमेशा हम ब्लू को साथ जोड़ लेगी और अक्सरियत नहीं बन पा रही दूसरी पार्टीज।
1: नहीं लेकिन सख्तियां करें, लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं उन पर तो सख्तियां ना करें ना।
0: जी बिल्कुल, लास्ट लेकर ने भी बिल्कुल ये बड़ी अच्छी बात की थी, कहता है यही मसला है हमारी पूरी उजलिंग फुल चीखा, उसके अल्फाज मैंने लिखे भी थे। हाँ कहना है हमने वो 1% को गामा करने के लिए ना 99% जो उनसे अच्छे लोग हैं उनको बीच में रगड़ देते हैं, ये उसके अल्फाज थे। कर तो कहता है कि हमारी कोशिश होती है कि जब बातचीत हो मेरे से के चलो जितना हम कर सकते हैं उतना तो रखें, मगर ये है कि जो ओपन क्लियर बात है कुछ नहीं बोले नहीं कुल चीख उतना फिला नहीं करती जितना आप देखते हैं इलेक्शन के दिनों में फिला करती, उतना फाइनलिंग के टाइम पे फिला नहीं करती। ये मेरे हो सकता है कोई कोलिग्स वगैरह जो उनसे दूसरी पार्टीज में भी आए उनकी अब कह रहा है इस पे, मगर जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं फ्रेंकली होकर आपसे कह रहा हूँ कि ये उजलिंग फुल चीख पे बकवा ज्यादा करते हैं, काम थोड़ा करते हैं सारी पार्टियां जो भी हैं,
1: सारी
0: और ये
1: पार्टियां
0: ब्लू
1: करती हैं,
0: पार्टीज कर
1: बराबर
0: रही है
1: के
0: इसको।
1: हिस्सेदार हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करने में अभी वो लाइनिंग भी तो कोई ऐसा रोल अदा नहीं करते ना। कभी किसी ने अपने कूक के लिए डेमोस्ट्रेशन नहीं की, कभी किसी अपने पार्टी के मेम्बरान के साथ मिलकर जो है कोई वफद नहीं गए, उनसे वफूद मिले नहीं हैं। तो जब खुद भी हम कोई
0: बिल्कुल
1: रोल अदा नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाता है ना।
0: और बिल्कुल आपकी ये बात मुझे हमेशा बड़ी अच्छी लगी है ये, और मेरा पैगाम हमारी मतलब सारी कम्युनिटी को ये कि हमें इकट्ठा होना पड़ेगा जी, इंसगास ऑर्गेनाइजेशन या लॉबीज़म जिसको कहते हैं करना पड़ेगा। अब मैं देखता हूँ ना बाकी नेटवर्क पे कुछ होने लगता है उधर से लॉबी उठ के आ जाती है जी, ये स्कैत के बारे में कुछ होने लगता है उधर से एक लॉबी उठ के आ जाती है आपके पास सपोर्ट करने के लिए। हमारा ये डेनिश मुस्लिम यूनियन बना हुआ है, अच्छा भला बनना बनना बनना था उसमें, मैं फ्रैंक होकर बोलता हूँ आपको मतलब मेरा आजू करा नहीं उधर से आउट हो गया, जो शुरू से बानी था मतलब डेनिश मुस्लिम यूनियन का बनाने में साथ थे, हम आउट हो गए जब मतलब हमारी ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फाफी ऑर्गेनाइजेशन होना को हम मानते नहीं, अपना अपना सारे चल रहे हैं अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं बस रहते ही है जी। जब उंगलियां ऐसे रहेंगी मुट्ठी नहीं बनेगी तब तक कुछ नहीं कर सकेंगे।
1: ये आपकी बात बिल्कुल सही है। तो
0: तो
1: आपने
0: ये
1: अगला इलेक्शन लड़ना है, बिल्कुल आपने लड़ना है, जोहर ने लड़ना है, कासिम नज़ीर ने लड़ना है, तो और लोगों ने भी लड़ना है। तो तैयारियां तो अभी से शुरू हो रही है, लेकिन ये जो बुनियादें आस्था सा पार्टियां जो तकसीम लोग हो रहे हैं, इस तरफ मेजॉरिटी की तरफ क्यों नहीं आते कि आपके लिए कौन आवाज़ उठाना चाहता है, उसका जहन किस तरह है, आप उसको प्रेशराइज तो ना कहें, प्रेशराइज का ज़रा सख्त लफ्ज़ हो जाता है, कि जो वोटर सपोर्टर होता है उसको भी तो कोई रोल अदा करना है।
0: जी। और एक पार्टी में असल में देखें एक पार्टी में भी हम सारे इकट्ठे हो जाए वो भी चले ठीक है, हमारी खेल वैसे माशाल्लाह इतने ज्यादा अपने लोग हैं इन द एंड,
1: नहीं तो रेडिकेल वाले एंड द एंड जब वक्त में आते हैं, तराजू उनके पास आता है तो उसमें जो तरक्की से जो गैर मुल्की उठा के बाहर फेंक देते हैं, गैर मुल्की से मुराद है मुतालबात को उठा के।
0: जी जी वही मुतालबात को, वही आप आगे लेके देखे। अब काफी लोग हम मेहनत तो कर रहे हैं, मगर अब स्ट्रेटेजिकली हमें आगे भी चल के ना थोड़ा सा स्ट्रांग भी होना पड़ेगा।
1: लेकिन अब जीशान देखा कि लोग एसएफ की तरफ जा रहे हैं, लोग एसएफ के मेंबर बन रहे हैं। अब
0: एसएफ के भी मेंबर बनेंगे, अभी गवर्नमेंट में एसएफ आ जाएगी तो एसएफ से भी हाथ धो बैठेंगे। आपको पता है गवर्नमेंट में आते ही राजा साहब पॉलिटिक्स का उसूल ही है, जितनी देर गवर्नमेंट में नहीं हो ना आप कहते रहते हो, लोग आपके सुते रहते हैं, माने लगे गवर्नमेंट में एसएफ आ रही। देखे अभी से ही कितनी चीजें जो इन्होंने अपने वो क्या कहते हैं इलेक्शन के दौरान बोली थी, ऑलरेडी उसको वापस लेना पड़ रहा है, इनको भी लेना पड़ रहा है। क्योंकि लोगों को ये समझने वाली बात है कि वादे करना उनको पूरा करना दो बड़ी बड़ी मुश्किल चीज है। तो पॉलिटिक्स में काफी दफा आपको ना क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, और एसएफ की तरफ इसीलिए तो एस भी चाहता है कि इस दफा एसएफ गवर्नमेंट में आए साथ, कि उनको भी पता चले कि बाहर खड़े होकर एसएफ ने पिछले काफी सालों से सोशल डेमोक्रेट की जो है ना वोटर्स ले लिए, मगर जब काम करने पे आएंगे तो वो भी कितना कर सकेंगे एसएफ वाले देखते हैं। तो आपको पता है जो भी पार्टी गवर्नमेंट में होती है वो हमेशा थोड़ी सी मार खाती है इलेक्शन में।
1: दिशान नौजवान वोट बहुत ज्यादा है, अगले इलेक्शन में नौजवानों के वोट बहुत ज्यादा होंगे, ऐसे टीचर ऐसे उस्ताद आप नौजवानों को क्या कहेंगे?
0: जी मैं तो यही है कि मेरी अब जब बात होती है राजा साहब, मैं ये शुक्र कर रहा हूँ कि इन इलेक्शंस के बाद ये हुआ कि यंगस्टर्स आके मेरे साथ पॉलिटिक्स की बात करते हैं, और अब देखता हूँ कुछ प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, मतलब मसाजिद के साथ भी और अपनी तंजीमों के साथ मेरे कॉन्टेक्ट है, मगर अभी जिस तरह कोई पॉलिटिक्स की तरफ आ नहीं रहा क्योंकि अब इलेक्शन हो गए, हम सारे आराम सुकून से बैठे हुए हैं, हमें यही असल में समझ में आता कि अगले इलेक्शन की तैयारी अब से है। तो उस तरह से
1: ना आप चंदा इकट्ठा करने की बात नहीं करते ना
0: चंदा असल जी मैं असल में अभी देख रहा था कल से की मीटिंग में बैठा था, उधर हमने फॉल्के सिंह बैल को भी इवेलुएट किया, उसमें मैं अपना भी देख रहा था, मेरा 20वां नंबर था, मतलब ना फसूल इस्तेमाल है मेरा, जो मुड़गा रन है कि जितने मतलब कैंडिडेट थे उसमें टॉप 20 में मेरा नाम था, और वही हंस रहा था मैं, विशाल यार बजट तेरा क्या है, खेड़ा छापे नहीं मेरे हाल से 5-10 हज़ार पूरा इलेक्शन लड़ दिए, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मतलब मुड़गा रन है कि भी उधर 20वें नंबर पे मतलब फसूल इस्तेमाल आ गई। तो ये कि बाहर निकल के अपनों से बातें करना, उनकी सुनना, उनको समझाना, उनकी समझना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, और इन द एंड कोशिश तभी पूरी हो सकती है जब फिर वोट भी जाके डाले, खाली बातें करने से काम नहीं बनेगा। मगर ये है कि ये जो अल्लाह का शुक्र है एक महीने में होती 3 हफ्ते ही तो थे मेरे पास, उसमें जाके जो गुफ्तगू की, जो बातें की लोगों के साथ, उनका काफी इम्पेक्ट हुआ। तो इसी चीज को आगे लेके चलना है, यही है कि उम्मीद करता हूँ कि और बंदे अब इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि ये इलेक्शन जिस तरह जा रहा था, जिस तरह फिर एक दफा उजड़ने पॉलिटिक टॉप पे थी कि हमारे लोग बढ़ चढ़ के निकलेंगे, और जब इस दफा भी नहीं निकले उस चीज ने मुझे बड़ा डिसार्ड किया हुआ।
1: नहीं निकले भी नहीं, लेकिन देखें ये फाइंडिंग हो रही है तो कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुई,
0: बस डेमोन्स्ट्रेशन आजकल सारे ये अगली जो जनरेशन आ गई है जी, उनको डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब समझ नहीं आता ना, अब ये इतने यंगस्टर्स है हमारे फलस्तीन के लिए डेमोन्स्ट्रेशन कर करके क्या हुआ, कुछ नहीं। मेरे ख्याल से लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन पे से भी अपना वो उठता जा रहा है,
1: स्टेट के अंदर स्टेट नहीं बन सकती,
0: नहीं वो भी नहीं, वो तो ऐसे ऐसे ही है, तो इनके इसीलिए एक्टिव होके काम करना पड़ेगा और काम करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ये बड़ा जरूरी है।
1: लेकिन ये अब उस्तादों का काम है, उस्तादों से मुराद है मेरी जो चीजों को समझते हैं।
0: जी जी बिल्कुल समझते हैं, आगे भी समझाते हैं, और हमें ये है कि थोड़ा और प्लानिंग से चलना पड़ेगा आपस में, आपस में भी मैं तो इसलिए हमेशा अभी कह रहा था कि आपस में मिल के प्लानिंग इंशाल्लाह अगली दफा करते हैं कुछ।
1: प्लानिंग तो होती है, एक एक होता है ना आंसर होता है, नहीं यार इस तरह ऐसे ही होता है, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही होता होता रहे, अगली दफा भी ऐसे होगा, ये सोच बड़ी अजीब है
0: ये। हाँ ये मैंने बड़ा सुना है 3-4 हफ्तों में कि ऐसे होता है, ऐसे ही करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफरेंट हुआ इस दफा, उम्मीद करते हैं कि लोग समझ सकेंगे कि हमें असल में अब खाने पीने पर जोर कम देना चाहिए और प्लानिंग पे ज्यादा।
1: खाने पे तो जोर है सारा,
0: खाना चाहिए राजा साहब, मगर सारा फिर जोर खाने पे नहीं लगना चाहिए ना। बात यह है कि प्लानिंग भी उसी जोर से होनी चाहिए, तो उसका इंशाल्लाह उम्मीद है कि
1: इंशाल्लाह जीशान इंशाल्लाह करेंगे। आपसे अगला प्रोग्राम काफी तफसील से करेंगे, तो आपका बहुत शुक्रिया। आखिर में कोई मैसेज देना चाहें?
0: जी मैसेज यही है कि अब ये इंशाल्लाह गवर्नमेंट बांधने लगी है, ये पिछले एक दो महीने ऐसे चले गुजर गए हैं थोड़ा शेडो में, अब जब गवर्नमेंट बांध जाएगी तो हमें भी बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए।
1: नहीं तो कोई ब्रेकिंग न्यूज तो दे देना, क्या होगा एक आध तो दे दें।
0: ब्रेकिंग यही आई थी जी के जुम्मे से पहले आपको गवर्नमेंट बनती नजर आ जाएगी, ये थी कि कौन लॉ सही तक बन जानी चाहिए इतना इतना था। बाकी बस यही है कि मिनिस्टर पोस्ट कौन कौन सी आ रही है इनका बिल्कुल नहीं पता चल पा रहा है। ये अब सबसे बड़ा मसला रह गया कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री किस किस को चाहिए, ये अब मेरे ख्याल से सबसे ये बैठ के बड़ा डिसाइड करना है।
1: चलें जुमरात की रात 12 बजे ये तय हो जाएगा
0: इंशाल्लाह। भी आ रहा है ना जी 5 जून का समय खोलो से आ रहा है, उससे पहले कोशिश कर रहे हैं कि उससे पहले पहले हो जाए, क्योंकि अब असल में अब जिस तरह आप देख रहे हैं कि चलें 40-45 दिन हुए थे ठीक है, मगर अब 2 महीने हो गए, अब कौम भी जरा तंग आ गई है कि अब बस करो यार, अब कुछ बचा तो नहीं।
1: अब जो है ना वोटर जो है कम होते जा रहे हैं, वोटर बढ़ नहीं रहे पार्टियों के जो फंडिंग में है।
0: नहीं नहीं वो भी असल में बस वही बैक टू बैक वही है ना कि ऑप्शन यही था कि कंसर्वेटिव जो जाती तब भी अच्छा था, ये उनकी उम्मीद थी कंसर्वेटिव विंसला को नहीं छोड़ा, एसएसएफ को नहीं छोड़ा, तो बस अब यही है जो है, तो देखे कितना कुछ करते हैं।
1: फिर ख्वातीन की मोहब्बत भी तो होती है ना जी
0: ऐसे ही है, मगर ये है कि हमारी जो उनसी पार्टी है इंशाल्लाह बेहतर होगा। अब ये है कि हमें बड़ा जरूरी है कि अब जब ऑफ या फौजदार मिनिस्टर जब आ जाएंगे तो हमें भी देखना चाहिए कि किन किन से रابطे रखने हैं, रابطे करना बड़ा जरूरी है। ये बड़ा जरूरी है, तो अब ये है कि आप सब तैयार रहे कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते से फिर अब ना जो कॉन्टेक्ट है, क्योंकि अब मतलब अड़खेल भी आ गई गवर्नमेंट में, ये भी मुड़वार ने भी गवर्नमेंट में, एसएफ भी गवर्नमेंट में होगी ठीक हो गया, तो फिर जिन कॉन्टेक्ट्स हैं उनको हम इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे, इनसे जो उनसा है कोई मिलन जुलन करें और पता करें कि कितने पानी में ये हैं। और हम
1: चलें जीशान आपका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहब।
1: सामान्य नाज़रीन ये थे जीशान अली जो के लास्ट लुके के पार्टी के हैं, अच्छी खासी अपनी पार्टी में ग्रिप रखते हैं, बड़ा असर रसूख है, अपनी बात भी अपने तरीके से कह जाते हैं, चूँकि उस्ताद है ना तो इतना ज़्यादा वो बड़े पोलाइट तरीके से बोलते हैं और अपनी बात जो है पार्टी के कानों में भी डाल देते हैं। समय नवाज राज हमारे साथ साथ रहिएगा, हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, अगले मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ऐ वतन प्यारे वतन। सवा नाजरीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है। 2:05 हो चुके हैं, 31/5/2026 का प्रोग्राम है। सुबह आपने आपको इंट्रो में बताया था कि आज बहुत सारी बातें करनी हैं। कम्युनिटी की बातें होती हैं, कम्युनिटी के प्रोग्राम होते हैं, हफ्ते में लोग बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं, प्रोग्राम्स भी होते हैं। तो हर आदमी को हक़ है, हर जमात को, हर तंजीम को हक़ है कि अपने प्रोग्राम करें। ये देखें, 28 मई इसके हवाले से मुस्लिम लीग नून ने 2 प्रोग्राम किए और अपने अपने तरीके से किए। अच्छी बात है, सियासतदानों को ये प्रोग्राम करने चाहिए, दिनों को याद करना चाहिए, इसलिए क्योंकि उनके लीडर के वक्त में ये धमाका हुआ और उस वक्त वो वज़ीर आज़म थे, तो पार्टी को ये क्रेडिट जाता है। पार्टी अपने अपने तरीके से मनाती है, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ ने 2 फंक्शन किए। तो इस वक्त नौजवान हैं, ये बड़े बोल्ड बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, वो कहते हैं खुलकर खेलते हैं, विकेट के बाहर भी खेल जाते हैं। तो मेरी मुराद है प्रोफेसर मंशा हमारे साथ हैं लाइन पर। मंशा, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको, आपकी आवाज़ पर।
1: शुक्रिया राय साहब, आपको और आपके तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से गुज़श्ता ईद मुबारक और अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। मंशा, सबसे पहले तो आपको जो है वो, ये जो बच्चा पाकिस्तान में उसकी बॉडी पहुंच गई, नौजवान था, चूंकि आप खुद पढ़े लिखे हैं तो ज़्यादा फीलिंग्स होती हैं आपकी, तो वो सारा जो काम मुकम्मल हो गया, शाम को उसका जनाजा भी हो जाएगा, बॉडी रसीव उन्होंने कर ली है, वो पहुंच भी गए हैं, लोगों ने तामन भी बड़ा किया, तो ये तो नौजवानों का काम है।
1: जी बिल्कुल राय साहब, ये जो मेरे साथ मेरे बहुत करीबी दोस्त था उसके साथ जब वो गए थे वहां पर, तो जब यह हादसा हुआ तो मुझे उसी पक्के पता चल गया था, तो टच रहे हैं हम। बहुत दुख हुआ है, बहुत दुख की बात है। अल्लाह पाक उनकी फैमिली को सब्र दे। उनके साथ पहले भी हादसा हो चुका है फैमिली में, लेकिन ये अल्लाह ताला की करनी है, बंदे के बस में नहीं होती। उनकी उनकी यहाँ पर ही मौत लिखी थी, शहादत की मौत है पानी के अंदर, पर ये अल्लाह ताला का फैसला है जी, बंदा क्या कर सकता है। हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उसकी मगरब फरमाए और उनकी फैमिली को जो है वो सब्र दे। और इसके साथ साथ आज मैं ये भी खबर देना चाहता हूँ आपके वसत से कि हमारे बहुत ही प्यारे भाई महबूब साहब का सदर है पीटीआई की, उनकी अहलिया भी काफी अच्छे से अलील थी, बीमार थी, वो भी अल्लाह ताला को प्यारी हो गई हैं। अल्लाह पाक उनको भी जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम दे, जगह दे। तो हम माँ भाई के भी साथ दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने अभी फातिहा रखी हुई है ईसाई मस्जिद में 3 से लेकर 6 बजे तक, तो अपडेट जो बाकी भी जनाजे की आती वो भी शेयर की जाएगी।
0: था जनाजा इंशाल्लाह कल जोर की नमाज के साथ होगा,
1: जोर की नमाज। हाँ जी, तो हम उनके साथ भी बराबर के शरीक हैं जी। वो बच्चा बेचारा वो भी पानी में शहीद हुआ, और ये माँ भाई की अहलिया भी बीमार थे, अल्लाह पाक इनके भी इनको सब्र दे फैमिली को और उनको जन्नतुल फरदौस में अल्लाह मुकाम दे।
0: चले मंशा, एक खबर थी तो आपके साथ भी रिलेटेड है, आपको भी ज़ाहिर है उस प्रोग्राम में थे और आपको सबसे बेहतर पता है कि एक खबर लगी हुई है कि डेनमार्क में यौम तकबीर की तकबीर की तकरीब सियासी धमाके में पाकिस्तान एम्बेसी पर जानबदारी के इल्ज़ाम की गूंज। ये लिखते हैं कि पाकिस्तान सोसाइटी डेनमार्क, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डेनमार्क, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ डेनमार्क, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेनमार्क, सब पार्टी और तंजीमों ने पाकिस्तान एम्बेसी के खिलाफ एहतजाज किया और आइंदा किसी भी प्रोग्राम में शामिल ना होने का फैसला किया। इसकी वजह पाकिस्तानी एम्बेसी शुएब सरवर साहब का रवैया है, आप क्या कहेंगे?
1: नहीं राय साहब, ये थोड़ी सी खबर हटके है, जैसे आपको सुबाक से हटके खबर है, लेकिन कुछ इसमें बाकी सच्ची बातें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि वहां पर सारी, जैसे आपको पता है कि 28 मई का प्रोग्राम हुआ और वो प्रोग्राम एक जमात का नहीं है, वो प्रोग्राम हमारी कम्युनिटी का है, वो प्रोग्राम हमारे सब पाकिस्तानियों के लिए है, जो हम आज एटमी ताकत बड़े हुए हैं, जो में तकबीर है, वो सब पाकिस्तानियों के लिए फख्र की बात है। उसमें जारी बात है, जाओ यहाँ की एम्बेसी है, एम्बेसडर है, वो भी पाकिस्तान की ही पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान है, हमारा छोटा वो पाकिस्तान कहलाता है, तो वो वहां पर बात करते हुए मैंने भी स्टेज पे मैंने खुद भी ये नुक्ता उठाया था और मैंने कहा था कि ये हमारे साथ ये यहाँ का जो एम्बेसी सिस्टम है इसका सलूक अच्छा नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है, हमने इसमें दावत दी, ठीक है एम्बेसडर साहब बिजी हो सकते हैं, अली स्ताद साहब बिजी हो सकते हैं, मेरे लिए बहुत काबिले एहतराम है, लेकिन एम्बेसी की वहां पर जो शमूलियत है, वहां पर हाजिरी वो होनी चाहिए थी, क्योंकि ये जो प्रोग्राम इस तरह के होते हैं जहां पर कम्युनिटी इकट्ठी होती है, जहां पर सारी जमातें इकट्ठी होती हैं, तो वहां पर हम बड़ी इज्जत के साथ एम्बेसडर को दावत देते हैं, एम्बेसी को दावत भेजते हैं, चाहे वो शॉर्ट टाइम के लिए हो, लॉन्ग टाइम के लिए हो, या लंबे टाइम पहले से पता हो। लेकिन अब डिपेंड करता है कि मैंने नोट किया है, तो मैंने इसलिए वो नुकता उठा दिया कि एम्बेसी की जहां मर्जी होती है वहां जाते हैं, जहां पर मर्जी नहीं होती वहां नहीं जाते। तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से ये बोला था कि अगर ऐसा रवैया रखना है हमारी कम्युनिटी के साथ, जहाँ पर हम बोली रिस्पेक्ट देते हैं, अभी भी रिस्पेक्ट देते हैं, रिस्पेक्ट के साथ हम बुलाते हैं, तो राय साहब अगर बंदे वहां पर ना जाएं तो वो जो जो फंक्शन हो रहा है, जो प्रोग्राम हो रहा है, वो सियासी प्रोग्राम नहीं था, वो 28 मई का प्रोग्राम था। वो आज आपको भी पता राय साहब, आप मुझसे मेरी उम्र से ज्यादा आपका तजर्बा भी है कि जो अब आज हम बनाना महसूस की बात करते हैं या इंडिया को नाकों चने चबाने की बात करते हैं या नोक जूते के नोक पर रखने की बात करते हैं, उसके पीछे रीजन भी यही थी ना कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क है और उस मजबूत मुल्क को बनाने के अंदर हमारी ये सच्ची बात है कि उस वक्त में नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उनका हाथ था, उन्होंने बहुत सख्त वक्त में, बड़े कड़े वक्त में बहुत कामयाब फैसले किए और वो पूरी क्यादत थी, डॉक्टर अब्दुल्कदीर साहब की टीम थी, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को क्रेडिट जाता है, मैंने सबको क्रेडिट दिया। लेकिन जब यहाँ पर हम ये प्रोग्राम मनाते हैं तो हम सब कम्युनिटी सब लोगों को बुलाते हैं, तो ये एम्बेसी वालों को हम बुलाते हैं क्योंकि हमारी अपना ये घर है, तो इनका मुझे बस इस बात पर इतराज़ था कि जब हम बुलाए तो कभी तो वो सियासी कह देते हैं कि ये सियासी प्रोग्राम है, कभी वो हमें नज़रअंदाज कर देते हैं, तो इसलिए वो वहाँ पर काफ लीग भी थी, पीपल्स पार्टी भी थी, कम्युनिटी के लोग भी थे और सोसाइटी के लोग भी थे और मजहबी और सियासी सब जमातें थी, तो सब ने यही बात कही जो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको आप खुद नहीं आ सकते।
0: आपके अलावा किस किसने कहा?
1: जब मैंने ये नुक्ता उठाया, नुक्ता उठाने के बाद हम बैठे हुए थे वहां पर, तो सब ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा, उसमें राजा फराज साहब बैठे हुए थे, अपना जो शौकत साहब बैठे हुए थे और काफली के भी और पीपल्स पार्टी के अंकल कृषि साहब बैठे हुए थे, तो मैंने उन्होंने सबने कहा कि बिल्कुल ये नुक्ता ठीक है कि जब कोई कम्युनिटी का प्रोग्राम हो या जब कोई ऐसा प्रोग्राम हो जो सियासी ना हो, जो एक एक शख्स के गिर्द ना घूमता हो, वहां पर वैसे की शमूलियत हमारे लिए बासे फख्र है, होनी चाहिए थी ना। अगर आप भी वहां पर
0: मतलब
1: होते आपको लगा
0: सारे जिनका नाम लिया वो आपकी तायद कर रहे थे,
1: वहां पर सब लोगों ने ये बात महसूस किया के कमी महसूस की, क्योंकि बाकी थे सब, तो कमी महसूस की कि यहाँ पर अगर हमारा जो पाकिस्तान का दूसरा घर है वो भी होता तो अच्छा होता, तो वो मैंने बात उठा दी, मैंने बहुत बोल दिया कि
0: तो ये आपने हमारी अच्छा कमी महसूस नहीं की। मैं कम्युनिटी फोरम का चेयरमैन हूँ,
1: मैंने ये जो प्रोग्राम हुआ था ये बहुत शॉर्ट लिस्ट पे हुआ और मैंने कमी महसूस की, और मैंने तो ये भी आपको शायद अंदाजा नहीं है मेरी इस बात के ऊपर, और मैं बड़ा स्ट्रेट बंदा हूँ, मैंने ये भी कह दिया था कि अगर जैसे सिकंदर भाई को मिला है वो अवार्ड मिला है तो तब उसके लिए भी तकरीब होनी चाहिए थी, ये नहीं कि आप दो तीन बंदों को, इतना बड़ा वार्ड हमारे डेनमार्क में मिला तो तकरीब होनी चाहिए थी, लेकिन वो भी एम्बेसडर साहब ने ना किसी से मशवरा किया ना बात की तो वो भी ऐसे ही वो वार्ड दे दिया, तो वो भी थोड़ा सा एक आपको पता है चहमकोइयां इसके बारे में भी होती हैं, हो रही हैं, तो बहुत सारी चीजें आती हैं सारे प्रोग्रामों में, सारी चीजों में आती हैं राय साहब। अब हमारे मुस्लिम लीग में उनके दो प्रोग्राम हुए, एक में आप शामिल हुए थे, दूसरा ग्रुप एक एंटी ग्रुप है उसमें आप शामिल नहीं हुए, लेकिन बात यह है कि वहां पर
0: नहीं, मैं तो शामिल आपके प्रोग्राम में होता रहूं जब जब आपने दावत दी है।
1: हाँ, तो ये प्रोग्राम के इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप तो एक कॉमन इंसान है, आप तो हर किसी की बात करते हैं चाहे वो कोई भी पार्टी हो, जैसे मैं हूँ, मैं सारी पार्टियों की इज्जत करता हूँ, सब पार्टियां मेरे लिए काबिल इत्तेला, मैं कुछ इतना बहुत बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूँ, बहुत बड़ा वो मुझे कोई,
0: लेकिन आप नौजवान थे, आप बड़ा बोर्ड बोलते हैं इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो ये जरा दुरुस्त कीजिएगा, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो आप मुझे तसदीक कर दें कि आपने पहली दफा बोले, अच्छा प्रोग्राम जा रहा था, सब अपने तरीके से बहुत अच्छा बोले जो खबर बार आई है, उसके बाद एक बार आप बोले, फिर दूसरी बार बोले, फिर तीसरी बार आप आखिर में आए, इसकी क्या वजह थी ये जो आपके बारे में?
1: मैं तीसरी दफा नहीं बोला, ये बिल्कुल गलत बात है, मैं जब प्रोग्राम खत्म होने वाला था तो मुझे काफी ये लोगों ने बोला था कि यार आपके प्रोग्राम में बेस्टर साहब नहीं आए,
0: किन्होंने बोला था?
1: नहीं, अब उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, तीन चार लोगों ने बोला, मैंने कहा ये मैं नुकता आपकी वसादत से बिल्कुल मैं आपको कम्युनिटी के आगे रखता हूँ, फिर मैंने दवा से पहले एक मिनट के लिए टाइम लिया, मैं तीन चार दफा नहीं लिया, एक मिनट टाइम लिया, मैंने कहा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, अगर यहाँ पर एम्बेसी का कोई अमला, कोई रुकन या कोई उनके शिमला, हमारे लिए फख्र होता, हमारे लिए अच्छा होता, मैंने सिर्फ ये बात की, और मैंने ये बात, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने ये बात कही कि जब भी कोई हमारा प्रोग्राम होता है तो हमारी एम्बेसी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल नहीं होती ना, बहुत सारे प्रोग्राम में शामिल नहीं होती, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो हम भी आने वाले वक्त में ये फैसला करेंगे, मुस्लिम लीग नून जो हमारा ग्रुप है वो फैसला करेगा, अगर हमारे ग्रुप में नहीं आते तो हम भी उनके
0: आपके सदर साहब जो आपकी इस बात की तायद करते हैं,
1: बिल्कुल सब ने तायद की, एक बंदा मुझे गनवा दें जिस बंदे ने कहा हो कि ये बात गलत है कि एम्बेसी को वहां पर शामिल नहीं होना चाहिए, एक बंदा भी नहीं, सब ने कहा कि आपने आप काफली के जो अपने यहाँ पर हैं वो अजहर बेग साहब हैं, उनसे मेरी बाद में बैठ के बात हुई, उसके बाद साहब बैठे, हम इकट्ठे बैठे रहे,
0: आपने अजहर साहब का बात की, राजा फराद की बात की, मजीब साहब की बात की, तो हमारे नौजवान सियासतदान हैं मियां मुनीर अहमद साहब, उन्होंने क्या कहा?
1: नहीं, सब ने देखे जी, मैं अब पर्सनल किसी का नाम राय साहब नहीं लेना चाहता, लेकिन सब ने ये एक बात कही कि ये अगर होते, ये अगर यहाँ पर शमूलियत होती तो अच्छा होता
0: और होना चाहिए था। दावत दी थी,
1: दावत तो सदर साहब ने दो दिन पहले दे दी थी दावत, मेरे कल 2 दिन पहले दावत दी थी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम पहले था कि हम लेट करेंगे, फिर अब हमारा प्रोग्राम यह बना था कि हम एट दी जो डे बनता उसी डे पे ही करेंगे, तो फिर हमने प्रोग्राम जो ही हमारा फाइनल हुआ उसी टाइम सदर साहब की ड्यूटी थी, सदर साहब ने एम्बेसडर साहब को रब्ता किया और अली स्टार साहब से भी रब्ता किया, ये सदर साहब की ड्यूटी थी, उन्होंने किया था रब्ता, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि एम्बेसडर साहब बिजी है, इट्स ओके, आपका कोई भी था, आपकी 22-23 लोग हैं वहां पर, कोई भी तो शमूलियत अख्तियार कर सकता है ना कि हाँ जी एम्बेसी की तरफ से ये वाले सेक्रेटरी साहब आए हैं या कोई भी वहां से कोई आ जाता तो वो थोड़ा हौसला हो जाता, बस ये बात करने वाली थी, बस इसमें कोई हमारी कोई वैसी से ऐसा कोई दुश्मनी नहीं है, कोई
0: नहीं, आपके तो हमेशा मैं देखता रहता हूं, आपके तो बड़े अच्छे तालुकात हैं।
1: हाँ शेख सरवर साहब मेरे बड़े रिस्पेक्ट करते हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, स्टार साहब बहुत यंग है और रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी करता हूँ, लेकिन जो बात जहाँ पर मुझे लगा थोड़ा सा तो मैंने बात वो कह दी, अब वो मेरे मुंह से बात निकलने वाली थी कि सब ने उसके ऊपर तईद की, सब उस पर राजी थे कि ये बात होनी चाहिए, हाँ जो भी हमारा कम्युनिटी का प्रोग्राम होता है हम यहाँ पर,
0: तो आपके प्रोग्रामों में वो जाते रहते हैं, देखिए ना अगर आपके चीफ पैटर ने प्रोग्राम कराया तो वो भी मुस्लिम लीग नून का था, आपने आप लोगों ने कराया वो भी मुस्लिम लीग नून का है,
1: एग्जैक्टली बिल्कुल उनको शामिल, ये देखिए जी मैं वो जो प्रोग्राम अब अली स्टार साहब गए थे तो कोई अच्छी बात है, उनका जाना बनता है, क्यों, क्योंकि ये हमारा जो 28 मई का प्रोग्राम है ये एक बंदे के ऊपर एक जमात के ऊपर आप मत थोपा करें, ये देते हैं जी ये मुस्लिम लीग नून का, नहीं नहीं ये पूरे पाकिस्तान का प्रोग्राम है, इसमें मनाते हैं मुस्लिम लीग नून है, ये हमारी खुशकिस्मती है, लेकिन ये सारे ही मुल्क के लिए बासे फखर की बात है।
0: चले मनशा, आपने आपका मौकफ था, आपने अपना मौकफ दिया, चूंकि हम इस मुल्क में रहते हैं, हम जमहूरी लोग हैं, हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन बार दफा बहुत सारी चीजें होती हैं वो सोचनी भी पड़ती हैं।
1: जी राय साहब बिल्कुल, मैं आपके इसी प्लेटफॉर्म को साथ से कहना चाहता हूँ कि हमारा किसी से कोई जाती इख्तलाफ नहीं होता, आज तक देखें जी कोई जाती इख्तलाफ नहीं है, हम बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं हर बंदे को, लेकिन कोई बंदा हमें रिस्पेक्ट ना दे, हमें कोई इज्जत ना दे या उस तरह से ना देखे तो राय साहब कभी ना किसी न किसी मोड पर सोचना पड़ता है, किसी न किसी वक्त पे वो बात करनी पड़ती है, तो हमें महसूस हुआ, हमने बात की तो वहां पर सब जितनी सियासी जमातें बैठी हुई थी उन सब ने भी वो उसी बात की तईद की, अगर वो इंशाल्लाह ताला फिर भी दोबारा बैठेंगे तो वो इस बात पे बात भी होगी, लेकिन हमें किसी से जाती तो पर्सनल तौर पर कुछ भी नहीं है, जैसे आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, आप मुझे बहुत क्लोज जानते हैं, मैंने कभी किसी के बारे में नेगेटिविटी गलत या किसी पे ब्लेम का भी बात नहीं की, तो बस ये छोटा सा पॉइंट था, तो राय साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह ताला आप ईसाई में आएंगे तो इंशाल्लाह मुलाकात
0: होगी, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया मनशा आपने अपनी टाइम हमारे साथ शेयर किया, ओके अल्लाह हाफिज़। सामान्य नाज़रीन हमारा किसी से मुत्तफ़िक़ होना ज़रूरी नहीं है, ये मियां मनशा थे अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, उनका मौक़िफ़ आपने सुना, जो राय थी उनके दिनी, चूँकि हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं तो हमारा काम है जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसके बारे में शहर में बातें चलती हैं, तो डेफिनेट अगर वही बात ना करे तो बात बड़ी अजीब लगती है। उन्होंने कहा जी वो सारे वहाँ बैठे हुए मेरी बात की तायद कर रहे थे, तो समझ चलते हैं आपके साथ, अगला प्रोग्राम शेयर करते हैं।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए, सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: سامعین کرام، ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، ہم آپ کو تازہ خبریں دیتے ہیں، لیڈران سے آپ کی بات کرواتے ہیں، لیڈران اپنا موقف بیان کرتے ہیں، شہر کی خبریں ہوتی ہیں۔ چونکہ لوکل پروگرام ہوتا ہے تو ڈیفینیٹ لوگ لوکل پروگراموں کی طرف بھی جو ہے وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ تو ہم جو کمیونٹی کے مسائل کی بھی بات کرتے ہیں، کمیون کی بات کرتے ہیں، پارلیمنٹ کے جو مسائل ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے نوجوان سیاستدان میاں منیر احمد صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ میاں صاحب، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
2: جی شکریہ صاحب۔
1: میاں صاحب، آپ بہت حوالوں سے جانے پہچانے جاتے ہیں، اگر میں تعارف کرانا شروع کر دوں تو آپ کا سارا ٹائم اور ہمارا ٹائم بھی چلا جائے گا۔ آپ نے بہت کام کیے، اپنے کمیونٹی کے لیے کیے، اپنے لوگوں کے لیے کیے، جس برانچ میں اپنی برانچ کے لیے کام کیے، آج بھی اسی برانچ کے سلسلہ میں آپ جا رہے ہیں اور اس وقت جو ہے وہ آپ انتظار کر رہے ہیں، آپ کی میٹنگ کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو ٹائم ہر چیز کا فکس ہوتا ہے۔ تو میاں صاحب، آتے ہیں، کم ٹو پوائنٹ آتے ہیں۔ تو یوم تکبیر کے حوالے سے پروگرام ہوئے، بڑے اچھے پروگرام ہوئے، بڑا پازیٹو بار سائن گیا، لیکن 28 مئی کے حوالے سے بھی پروگرام ہوا۔ ہر کسی کو جانا چاہیے، ہر کسی کو کرانا چاہیے، سب کا پروگرام ہوتا ہے۔ لیکن میاں صاحب، میں خود میڈیا کو، میڈیا کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ جب میڈیا پہ خبریں آتی ہیں، جذبات میں لوگ تقاریر کرتے ہیں، تو بائیکاٹ کی باتیں بھی چل پڑتی ہیں۔ پھر آپ جیسے ذمہ دار لوگ جہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے وہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ سیاسی طور پر میں بات کر رہا ہوں۔ تو میاں صاحب، آپ پروگرام کے اس طرح کی باتیں اخبارات میں نے پڑھی ہیں، تو اس میں بائیکاٹ کا ذکر آیا، چند سوسائٹیز کا بھی ذکر آیا، چونکہ آپ ہیڈ کر رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ، آپ قائم مقام ہیں، صدر بھی ہیں، اور دوسرے حوالوں سے بھی آپ جانے پہچانے چاہتے ہیں۔ تو میاں صاحب، آپ، امید ہے میرا سوال سمجھ ہوں گے، آپ کیا کہیں گے؟
2: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ رائے صاحب۔ سب سے پہلے تو سنت ابراہیمی پچھلے دنوں 2 دن پہلے عید قربان تھی، اور اس کے ساتھ بہت سارے ملینز لوگوں نے حج کیا، اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول کرے، ان کی دعائیں قبول کرے۔ ہم مسلمانوں پر اس وقت جو وقت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اتفاق اتحاد دے، اور اسی طرح سب کو جنہوں نے قربانی کی، اور اس عیدین کے موقع پر میں مبارک بھی دیتا ہوں۔ باقی جو بات آپ نے کی ہے، میرے خیال میں یوم تکبیر کے حوالے سے یہ ضرور کہوں گا کہ یوم تکبیر تو ہمارا ایک قومی دن ہے، ہمارا ایک قومی اثاثہ ہے جس پر ہمیں فخر ہے۔ ہم نے 28 مئی 98 میں ہم نے دھماکہ کیا، اور الحمدللہ رب العالمین، یہ ہمارے لیے، دفاع پاکستان کے لیے، بلکہ دفاع اسلام کے لیے ایک ایسا پلر جو ہے ثابت ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس پر قوم کو فخر ہے، اور اس پر جتنا بھی کوئی کچھ کرے، خوشی کا اظہار کرے، یوم تشکر منائے، یہ زندہ دل قوموں کی پہچان ہوتی ہے، تو میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اب آپ میرے خیال میں تھوڑا سا واضح کریں کہ میں کچھ سمجھا ہوں کچھ نہیں سمجھ رہا، کہ پروگرام تو ہوئے ہیں، 2 پروگرام ہوئے ہیں، اور دونوں ہی پروگرام جو ہے ایک ہی جماعت مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ہوئے ہیں، بڑے اچھے پروگرام ہوئے ہیں اور ہونے چاہیے تھے۔ تو اس میں جو بات ہے وہ ذرا میرے خیال میں آپ جس طرح،
1: چلے میاں صاحب میں ذرا کھل کے بات کر دیتا ہوں۔ ایک میڈیا ہے، میڈیا نے اپنی خبر لگائی ہے، تو میں اس کا جو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ چونکہ پاکستان سوسائٹی ڈنمارک، پاکستان مسلم لیگ نون ڈنمارک، پاکستان مسلم لیگ کاف ڈنمارک، پاکستان پیپلز پارٹی ڈنمارک، سب پارٹیوں اور تنظیموں نے پاکستان امبیسی کے خلاف احتجاج کیا ہے، اور آئندہ کسی بھی پروگرام میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ ہے، کہ اس کی وجہ پاکستانی امبیسڈر ڈنمارک شعیب سرور صاحب کا رویہ ہے۔ یہ مدعا ہے جی۔
2: دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے پاکستان سوسائٹی کا نام لیا ہے، اور ابھی آپ نے کہا کہ میں ایک پاکستان سوسائٹی کا جنرل سیکرٹری ہوں۔
1: آپ جنرل سیکرٹری بھی ہیں اور قائم مقام صدر بھی ہیں،
2: ٹھیک ہے۔ تو میں نے تو کسی کو یہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی، اور نہ ہی یہ پاکستان سوسائٹی کے کسی دوسرے فرد واحد نے بات کی ہے، مشورہ کیا ہے، ہمارے صدر صاحب پاکستان ہے۔ تو یہ بات جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر سوشل میڈیا پر یا میڈیا میں یہ کوئی بات پھیلاتا ہے تو یہ بہت افسوس کی بات ہے، یہ بہت غلط ہے۔ اب جو مدعا ہے اور اس پر کھل کر بات ہوگی، دیکھیں، یوم تکبیر کا ایک پروگرام مسلم لیگ نون ڈنمارک نے کیا تھا 28 کو، میں بھی وہاں موجود تھا، آپ نہیں تھے، بہت سارے لوگ اور تھے۔ वहाँ बहुत अच्छा वो प्रोग्राम था, उसमें बड़े अच्छे इस दिन के हवाले से बातें हुई। लेकिन उस प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नून के एक ओहदेदार हमारे बरखुरदार ने उठकर एंड ऑफ द प्रोग्राम जो है एक बात की जो सफारतखाना के हवाले से थी। मैं समझता हूँ कि उसने बिल्कुल गलत अंदाज में, गलत टाइम पर और गलत फहमी में ये बात की और ओवर रिएक्ट किया इस चीज को कि यौम तकबीर हम मना रहे हैं, हमें मनाना चाहिए। अब यौम तकबीर जो है वो चांद निकलने से तो नहीं मनाते, वो तो हमें पता है। हमें यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को अब देख रहे हैं कि 28 साल हो गए हैं धमाका किए हुए, हर साल मनाया जाता है, ये लोग भी मनाते हैं। इसकी एक प्लानिंग पहले होनी चाहिए थी और मुतल्लिका अदारों को, अब पाकिस्तान एम्बेसी की बात हो रही तो इन टाइम उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था कि हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको ये इन्विटेशन है। यहाँ तक मुझे पता है और मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है ऐसे नहीं हुआ। देखें ईद का दिन था, जैसे हम सब ईद मनाते हैं इसी तरह एम्बेसी हो या कोई लेट्स है कोई किसी भी ओहदे पर हो, पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है कि लोग अपने अपने हल्कों में जाते हैं और ये 3 दिन छुट्टी होती है ऑफिशियली। तो यहाँ ये 3 दिन और प्लस 2 दिन वीकेंड के 5 दिन की छुट्टी थी और एम्बेसी के लोग इंक्लूड हमारे सफीर मोहतरम अगर वो अपनी फैमिली के साथ बाहर गए हैं और वो आउट ऑफ स्टेशन है तो फिर मेरे ख्याल में उनका आना तो बहुत मुश्किल लगता है मुझे इसमें। और अगर आपने उन्हें इतला ही नहीं दी और इतला आपने 1 या 2 दिन पहले दी है जब वो ऑलरेडी यानी कि अपने प्लान के मुताबिक अपने बच्चों के साथ आउट ऑफ स्टेशन है जिधर भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये एहतजाज ऐसे होना नहीं चाहिए था, कम से कम इस तरीके से नहीं होना चाहिए था। और मेरे ख्याल में ये फर्द वाहद ने किया है। यहाँ तक मेरी मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट से बात हुई है, मेरे साथ जो उन्होंने बात की है उन्होंने कहा जी मुझे तो खुद नहीं पता था कि वो साहब ने जो बात कर दी। सो राया साहब मैं किस्सा मुख्तर यही है कि मेरे ख्याल में हम कभी कभी कुछ चीजें जो है ना बहुत जल्दी में और अपने जातियात में करके और मसाइल को खुद जो है वो जो तूल देते हैं जो शायद फिर बाद में हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक तरफ हम एक इतनी बड़ी खुशी मना रहे हैं और किस चीज़ की मना रहे हैं, कौमी जज्बात के तहत मना रहे हैं, दूसरी तरफ अगर अपने ही इदारों पर हम वो चीज़ जो है अल्ज़ाम की शक्ल में या गलत प्रोपेगेंडे की शक्ल में लेकर आएंगे तो फिर तो उसका फ़ायदा क्या होगा, फिर तो नुकसान है मेरे नज़दीक। जी राज साहब,
1: मियाँ साहब आपने बात की कि ये फर्द वाहिद ने काम किया, तो मियाँ साहब जो हमने एक चीज देखी तो लोगों को हमने तालियां बजाते भी देखा।
2: देखें बात ये है कि अगर कुछ लोगों ने इस चीज को उधर इस तरह भी किया, भी आप कह रहे थे कि दूसरी कोई पार्टियां जो उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी है, ये तो खैर वो खुद ही इसका जवाब देंगे। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, अब मैं तो जिधर बैठा था मैंने तो नहीं किसी को तालियां बजाते देखा और मैं तो इस चीज के पर वहां भी मेरा एक रिएक्शन था और वो रहेगा, मुझे वो बिल्कुल परवाह नहीं है किसी चीज की, गलत चीज का मैं हिस्सा नहीं बन सकता ना मैं बनूंगा। जिधर मेरे मुल्क और मेरी कौम की बात हो वहां मैं मुझे अगर अकेले भी खड़े होना तो आई स्टैंड विद इट। अब बात यह है कि यही सफीर जिसके बारे में लिखा जा रहा है, राया साहब ऑनेस्टली अब मेरा किसी से और ना ही मुझे जरूरत है, मैं भी इस शहर का इस मुल्क का सिटीजन हूँ, 55 साल से मैं इधर हूँ और एम्बेसी हमारी जो है 50 साल से इधर अल्हम्दुलिल्लाह है। मैंने नहीं आज तक किसी सफीर को देखा पब्लिक में इतने जो जाते हुए या पब्लिक में जाकर यानी के इतनी ओपन माइंड और लोगों में जाकर मसाजिद में फंक्शन में हर तरफ, तो हर बंदे का एक अपना अपना क्या कहते हैं स्टाइल होता है, जिम्मेदारी निभाने का एक तरीका कार होता है। तो कुछ चीजें जो हैं अगर हम बिला वजह एक किसी ओहदेदार के साथ या किसी अदारे के साथ मुंसलिक करना चाहते हैं क्योंकि हमारा जाति उसमें मुफाद है, तो फिर ये मैं इस बात को कंडेम करता हूँ, मैं समझता हूँ ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। और अगर ये बात हुई भी ऐसे तो चले मतलब है कि इस पर उन्हें पहले बात कर लेनी चाहिए, कम से कम आपस में तो बात कर लेते हैं ना। अभी आपने मतलब पाकिस्तान सोसाइटी का भी किसी ने लिख दिया, कौन है पाकिस्तान सोसाइटी का ओहदेदार जिसने ये स्टेटमेंट लिखी है ये दी है? फिर तो ये सारे न्यूज ये जितने भी मीडिया है जिसमें आप सभी आते हैं, फिर इसका मतलब कि हमें तो फिर पता ही नहीं है कि कोई जो मर्जी लिखी जा रहा कही जा रहा, तो ऐसे चीजें नहीं चलती। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। हाँ, उसमें एक पार्टी के अंदर हो, तंजीम के अंदर हो, अपनी इंडिविजुअली एक सोच हो सकती है, लेकिन उसका इजहार ऐसे नहीं हो सकता जिस तरह मतलब है कि वो आप एक उस पार्टी या उस तंजीम के प्लेटफॉर्म से करते हो। मैंने अभी आपसे कहा कि मेरी बात हुई है मुस्लिम लीग नून के हमारे अफ्ताब रूमी साहब से, जो यानी कि ऑफिशियली पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इसहाक डार से लेकर मलक अमजद से लेकर और यहाँ लोगों के दरमियान एक और
1: सारा के सदर है, इसमें कोई दौर आए नहीं है।
2: हाँ जी, तो उन्होंने तो ये बात जो है उन्हें तो नहीं पता था कि मियां मंशा साहब जाकर ये स्टेज पर बात कर रहे हैं, और उन्होंने इतनी तालियां बजाई इस पर, ना ही मैंने कहीं देखा। बहरहाल ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है, और मैंने जैसे कहा पहले कि ये ओवर एक्ट किया गया उस वर्कदार की तरफ से, ये बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए। और मैं अब अपील करता हूँ कि इसको मजीद मीडिया में या ये जो सो कॉल इस वक्त सोशल मीडिया बना हुआ जिसका कोई सिर पांव ही नहीं होता, उसमें ये ना छाला जाए। इसमें हम सब की जो है यानी कि देखें, इतना अच्छा एक सिस्टम चल रहा है इस मुल्क के अंदर और सालों साल से चल रहा है, तो ये फिर चीजें
1: चले। मियां साहब, आप इसको कंडेम करते हैं
2: 100%,
1: और आप सफीर पाकिस्तान के सफारत खाने के साथ खड़े हैं।
2: देखें जी, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा हूँ, और सफारत खाना पाकिस्तान जिधर भी है, अब डेनमार्क की बात हो रही है, वो हमारा छोटा पाकिस्तान है, उसके अंदर सफीर मोहतरम से लेकर जितने भी स्टाफ हैं वो हमारे मेहमान भी हैं, वो अपनी अपनी जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं। हमने अपनी कोई अगर रूटीन से कोई काम नहीं ठीक चल रहा तो हम मशवरा भी देते हैं, वो सुनते भी हैं, उसका इजाला भी हुआ। सो मैं नहीं समझता कि ये चीजें इस तरह अब एक पार्टी बेस।
1: चले मियां साहब, आते हैं एक दूसरी बर्निंग न्यूज है, आप डेफिनेट आप इस पर बात करेंगे क्योंकि आपसे रिलेटेड है और आप उस तंजीम के सदर रहे, चेयरमैन रहे। तो मियां साहब, आज इलेक्शन होने जा रहे हैं टैक्सी ब्रांच की, आप क्या कहेंगे?
2: जी राय साहब, ये टैक्सा फिया का फेमस साहब जो है, ये डेनमार्क की अब बड़ी तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन सबसे पुरानी 117 साल पुरानी कंपनी है। ये एक सिस्टम है उसका, जिसमें यानी कि मंशूर के मुताबिक हर मई में इलेक्शन होते हैं। मैंने ये इलेक्शन जो है 3 दफा भुगते हैं, मैं लास्ट ईयर इसे निकल गया था और आज बिल्कुल मैं उधर ही जा रहा हूँ, मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँच रहा हूँ। तो ये एक जमहूरी प्रोसेस है और इसमें यानी कि जो मेंबर हैं, सिर्फ जो मेंबर हैं वो ही आ सकते हैं, और जो सिस्टम है उसके मुताबिक एक बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, 300+ लोग मेंबर जो हैं आ रहे हैं, और वहाँ सारा जो है एक सिस्टम के तहत सारा एक वकील की क्या कहते हैं आप सरबराही में लुक आफ्टर में ये सारा प्रोसेस चलेगा, कई घंटे चलेगा। जो एक यहाँ एक डेनिस सिस्टम है उसके मुताबिक हर चीज को वॉच आउट किया जाएगा, इसमें क्या कहते हैं यानी कि जो माजी एक साल गुजरा उसका कैसा रहा सिस्टम, आगे फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, फिर वो कौन से लोग हैं, चेयरमैन का आज इंतखाब है, फोरमैन का, इसी तरह जो बॉडी के मेम्बरान है उनका इंतखाब होना है, तो कंपनी के लिए क्या अच्छा है, क्या किस चीज की चेंजिंग जरूरत है, वो हर जो है मेंबर वो अपना इसमें अदा कर सकता है क्या कहते हैं अपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू, तो इंशाल्लाह वो इस तरह ही है।
1: मियां साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती मालूमात हमारे साथ शेयर की।
2: साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अल्लाह ताला हम सबको इत्तेफाक प्यार दे, आने वाला वक्त हम सबके लिए अच्छा हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।
1: सामने नाज़रीन, ये थे मियां मुनीर अहमद साहब जो के आपसे बात कर रहे थे। मियां साहब अवामी आदमी है और हमारे जो हैं वो नौजवान सियासतदान हैं। मियां साहब ने जो कहा ये उनकी राय है, उन्हें कहना भी चाहिए।
0: सामईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: हुआ है, हमें भी चाहिए अगर कोई बात ऐसी आ जाए जिससे कि किसी को तकलीफ पहुंचती हो या कुछ, उससे हम गुरेज करें। और यही मेरा पैगाम है, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: सामान नाज़रीन, ये थे मुजीब रहमान
2: सामेन
1: मौलवी साहब।
2: कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। 31/5/2026 का प्रोग्राम है। सामिन नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप आरा हवाले से जानते हैं, अगर सियासत के हवाले से नाम लें तो वो सियासत में 28 साल एक्टिव रहे, काफ लीग के सदर रहे। अगर आप सोशल वर्क का नाम लें तो उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कम्यूनिटी के लिए बात करें तो उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान एम्बेसी का नाम लें तो सबसे सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं। तो हर वो काम जो कम्युनिटी का होता है, पाकिस्तानियों का होता है, उसमें भरपूर हिस्सा लेते हैं। मेरी मुराद है चौधरी शौकत साहब, जो कि मशहूर बिजनेसमैन इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। चौधरी साहब, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब और आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल और उनके जो भी मामला होते हैं उनको उजागर करते रहते हैं।
1: चौधरी साहब शुक्रिया आपका। चौधरी साहब, ये खबरें लगती रहती है, प्रोग्राम होते रहते हैं, कौमी त्यौहार होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। 28 मई के हवाले से प्रोग्राम हुए, डेफिनेट आप गए भी होंगे, सुना भी होगा, और ये अच्छी बात है। 28 मई मनाना चाहिए, खुशी की बात है, कम्युनिटी को इकट्ठा भी होना चाहिए, सबका प्रोग्राम होता है। लेकिन चौधरी साहब, इसमें अम्बेसी ने, हमने देखा कि हमेशा अम्बेसी हर किसी के साथ तावन करती है, कोई फर्क नहीं रखते, और उनकी अपनी मसरूफियात भी होती है। जहाँ कोई बुलाता है, कोई सियासी ना हो जो कौमी लिहाज से हो, किसी ने 24 को बनाया या यौम तकबीर किसी ने 28 को बनाया, तो अगर इसको सियासी रंग ना दिया जाए तो इन जगहों में लोग ये जाते रहते हैं। लेकिन छुट्टियां भी आपको पता थी, छुट्टियों में लोग हाजिर भी नहीं होते, मौजूद भी नहीं होते, इस मुल्क में भी नहीं होते। तो चौधरी साहब, आपने बहुत सारी बातें सुनी, हमने मीडिया में पढ़ी, तो खबरें ऐसे आ रही हैं जैसे वो, क्योंकि आप भी एक जमात से तल्लुक है, मुस्लिम लीग काफ ने भी बाइकाट किया, फलां ने फलां फलां ने भी किया, हम बाइकाट करेंगे, तो इस तरह की खबरें आप भी देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं, आप क्या कहेंगे एज ए सियासतदान और बिजनेसमैन?
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राजा साहब बहुत शुक्रिया। राज साहब, जैसे कि आपने थोड़ा सा तफसीली बताया पाकिस्तान अम्बेसी के हवाले से, मैं समझता हूँ पाकिस्तान अम्बेसी हमारा छोटा पाकिस्तान है डेनमार्क में, और माशाल्लाह जनाब शोएब सरवर साहब जो हमारे अम्बेसडर है, वो पूरा अम्बेसी का अमला इस वक्त बहुत ही अच्छा काम करता है, और पूरी कम्युनिटी के साथ इनका तावन होता है। कोई भी काम हो, कोई भी कहीं गैदरिंग हो पाकिस्तान के हवाले से, शोएब सरवर साहब हमेशा टाइम देते हैं, अम्बेसी हमेशा टाइम देती है। और आपको पता है ये जो इशू बना था, ये काफ लीग के हवाले से जो लिखा है, मेरा इस ग्रुप के साथ कोई तल्लक नहीं है, काफ लीग के ग्रुप के साथ तल्लक नहीं है ये, और मैं समझता हूं कि ये किसी बंदे का फर्दन फैसला हो सकता है कि बाइकाट कोई करे अपना पाकिस्तान अम्बेसी का। मैं बिल्कुल डंके की चोट पे पाकिस्तान अम्बेसी के साथ खड़ा हूं, पाकिस्तान अम्बेसी के साथ रहूंगा हमेशा से। पाकिस्तान अम्बेसी हमेशा से कम्युनिटी की आवाज बनी है, कम्युनिटी के मसाइल को उजागर किया है, उनके साथ होते हैं, और जो भी दिन मनाए, जो भी कोई ऐसा काम हो, जो भी ऐसा दिन हो, तो आप अप्रोच करें अम्बेस शोएब सरवर साहब से या फर्स्ट एफपीआई अली स्टार साहब से, तो वो टाइम देते हैं। ये दिन इस तरह बन गया था क्योंकि ईद का दिन था, ईद के दूसरे दिन नून वालों ने प्रोग्राम बनाया था। इसमें आपको पता है कि अपने अपने मामला होते हैं, वो ये तो हम छोटे से अपने घर कुंबे की बात करते हैं, वो तो अम्बेसडर है, पूरे पाकिस्तान के अम्बेसडर है, पूरे पाकिस्तान की अम्बेसी है, और पूरी दुनिया के लिए वो अम्बेसडर है पाकिस्तान के अम्बेसडर जो है। तो उनका अपने भी टाइमिंग होती है, अपना हो सकता है उनका शेड्यूल टाइट हो, उनका कोई इस तरह का हो, इन लोगों को चाहिए कोई और दिन रख लेते, ईद के दूसरे दिन ही इन्होंने रखा। लेकिन लेकिन मैं उनकी उन पर बात नहीं करता, मैं एज ए अम्बेसी के हवाले से करता हूँ। अम्बेसी बहुत अच्छा काम कर रही है, शोएब सरवर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम्युनिटी के साथ तावन करते हैं, और ये बिल्कुल प्रोपोगंडा हो रहा है, बिल्कुल इसका हम बिल्कुल कम्युनिटी डेनमार्क की कोई हिस्सा नहीं है, और हमेशा से पाकिस्तान अम्बेसी ने काम अच्छे तरीके से किया है, हर मसले पे काम कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है किसी की जाती हो सकती है, लेकिन इसका पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ कोई तल्लक नहीं है। और जो खबरें भी लगती हैं, खबर वालों को भी चाहिए कि वो अपनी तरदीद किया करें, अपना देखें इस तरह की खबरें जो है ना, पहले उनको जो है ना पिन पॉइंट करके उसके बाद ये करनी चाहिए। ये बिल्कुल इसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम पाकिस्तान अम्बेसी के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान अम्बेसी के शाना बिशाना रहेंगे, शोएब सरवर के साथ खड़े हैं, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान होने के बावजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो है ना अम्बेसडर जो है ना पाकिस्तान के, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की इज्जत इस वक्त दुनिया कर रही है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम इन त्योहारों पे, इन दिनों में या कोई इस तरह की बात जो होती है उस पे पाकिस्तान की या पाकिस्तान की इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, ये कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बिल्कुल हम नहीं एक्सेप्ट करते। हम पाकिस्तान अम्बेसी के साथ हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह पाकिस्तान अम्बेसी के साथ रहेंगे।
1: जो सब आपका मौकफ आ गया और आपने बड़े खुले अल्फाज में अपना मौकफ बयान किया और ये आपका राइट है। समय नाजरीन, ये जो प्रोग्राम होता है ये इंफॉर्मेशन के लिए होता है, तो जब भी कोई बात की जाए तो सोच समझ कर बात की जाए। यहाँ आज़ादी है बात करने की, बोलने की, लिखने की आज़ादी है, तो हम लोग जमहूरी हैं, जमहूरी बात जमहूरियत में बात होनी चाहिए, लेकिन मौके की मुनासिबत से बात होनी चाहिए। खाली प्रोपगंडे की शक्ल में एक बयान दाग देना उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, जिस तरह चौधरी शौकत साहब फरमा रहे हैं। ये आपका हक है बात करना, हम किसी को रोकते नहीं है कि वो बात नहीं कर सकता, कोई भी बात करना चाहे तो उसको दिए, हमारा टाइम हाजिर है। चौधरी साहब आपने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया, मुल्की हालात पर थोड़ी सी बात कर ले। पाकिस्तान बड़ी अब तरक्की कर रहा है और चूंकि आप खुद बिजनेसमैन हैं आपको पता है कि तरक्की हो रही है या नहीं हो रही। ये आप सारा कंस्ट्रक्शन का काम देखें, आपके खारियां गुजरात में आप देखें कितने तरक्याती काम हो रहे हैं। चौधरी शाफे साहब जो है बड़े काम कर रहे हैं, उनके भाई जो वजीर है हमारे ओवरसीज के वो बड़े काम कर रहे हैं, और खबरें ये भी आ रही हैं कि वो 14 अगस्त को चौधरी सालक साहब भी आएंगे, और इन चीज़ों का डेफिनेट आपको भी पता होगा, आपको इलम में होगा, आपको इतमाद में लिए बगैर तो लीडर यहाँ नहीं आते।
2: राय साहब, जैसे आपने फरमाया कि पाकिस्तान के हवाले से माशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजान है और बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की दुनिया में रिस्पेक्ट हो रही है। कुछ लोग होते हैं कि जो मनफी सोचते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत अच्छा सोचती है, पाकिस्तान के साथ है, इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ देगी, और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ना अब बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं पंजाब अपने इलाके की। जैसे मेरे बात की आपने हमारे गुजरात की, तो जो है ना हमारे गुजरात में हमारे चौधरी बरादरान माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वो पहले होता था कि करप्शन ये हो रहा है वो हो रहा है, कि कोई भी अपोजिशन लोग भी वो उनकी तारीफ कर रहे हैं, चौधरी शाफे साहब की, चौधरी सालक साहब की, कहते हैं कि बहुत शरीफ बाप के बेटे हैं, अच्छे हैं, हर बड़े अच्छे तरीके से मनज़म तरीके से ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए और अपने जिले के अपने डिस्ट्रिक्ट के तरक्की के लिए ये काम कर रहे हैं। सालक साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ओवरसीज की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। देखें, ये पहले कश्तियां डूबती थी और उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में जाके दौरे करके उन्हें कहा कि हमें पैकेज दें ताकि हम लीगल तरीके से अपनी आवाम को भेजें और ताकि वो पाकिस्तान के लिए भी खिदमत करें और आप लोगों के मुल्क में जहां आते हैं वो भी लीगल तरीके से आके खिदमत करें। ये उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और अब जो प्रोपोगंडा पाकिस्तान का होता था कि ये 2 नंबरी लोग भेजते हैं, इस तरह करते हैं, ये इनमें मेरे ख्याल में बहुत हद तक जो सालक साहब जब आए हैं तो उसके बाद ये काम खत्म हो गया है और मैं समझता हूँ ना होने के बराबर रह गया। तो बाकी भी अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जो कोई थोड़ा सा है वो भी खत्म होना चाहिए, लीगल तरीके से पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और चौधरी शाफे साहब जो है पंजाब में हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो काम कर रहे हैं गुजरात के हवाले से, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से वो जो है डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अपने सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो मैं समझता ये बेमिसाल है और इसी तरीके से ये होना चाहिए। और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान अभी रुकने वाला नहीं है, पाकिस्तान इस तरीके से तरक्की करेगा तेजी से कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया की जो है ना पूरी दुनिया कहेगी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने थोड़े से अरसे में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। पाकिस्तान की क्यादत ने चीफ मार्शल जो है ना हमारे हैं, वो फौज हमारी जो है अच्छा इस तरीके से किरदार अदा कर रही है, जो है ना दहशतगर्दों पे काबू पा रही है। उसके बाद ये देखे मुल्क के बारे जो जंग हो रही है, इतनी बड़ी जंग जो है ना रुकवाई है पाकिस्तान ने, ये छोटी सी बात नहीं है, ये पाकिस्तान का कुदरती अल्लाह पाक ने इसकी रस्सी जो पकड़ी हुई है, अल्लाह पाक तरक्की दे रहा है पाकिस्तान को, अल्लाह पाक पाकिस्तान को तरक्कियों की रास्ते में गामजान इस तरीके से तेजी से जो कर रहा है कि अल्लाह पाक की पीछे जो है ना ये हमारी मदद है अल्लाह पाक की, जो इस तरीके से इतनी तेजी से चीफ मार्शल साहब जो है ना हाफज जो है और कुरान पाक हिफज किया हुआ है, इससे तरीके के अल्लाह पाक उनको और जिंदगी दे, इस तरीके से वो अच्छे पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। सियासी हवाले से वो खुद देख रहे कि ये जो प्रोपोगंडे होते ही रहते हैं, लेकिन हम जो अब डेनमार्क में रहते हैं हम फील कर रहे हैं कि पाकिस्तान की एक रिस्पेक्ट दुनिया में हो रही है, हमारी भी हो रही है और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट हो रही है कि पाकिस्तान भी एक मुल्क है जो कि पूरी दुनिया को अमन के रास्ते में गामजान कर सकता है। राज साहब,
1: चल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया, इंशाल्लाह आपसे राबता रहेगा।
2: जी बहुत शुक्रिया राज साहब, बहुत मेहरबानी, तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। सामान्य नाज़रीन, ये थे चौधरी शौकत जो कि डेनमार्क के मशहूर बिजनेसमैन हैं। उन्होंने बातें की, दिल की बातें की और बड़ी खुलकर बात की, कोई लगी लिपटी बात नहीं की। एज ए पाकिस्तानी, एज ए सच्चा पाकिस्तानी उन्होंने अपने ज़मीर की बात की। सामान्य नाज़रीन, हमारा किसी मुतफिक होना ज़रूरी नहीं, अगर कोई बात करना चाहता है, अपनी राय देना चाहता है, उसके लिए अदारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
3: सामईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। 31/5/2026 का प्रोग्राम है। सामिन नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप आर हवाले से जानते हैं, अगर सियासत के हवाले से नाम लें तो वो सियासत में 28 साल एक्टिव रहे, काफ लीग के सदर रहे। अगर आप सोशल वर्क का नाम लें तो उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कम्यूनिटी के लिए बात करें तो उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। पाकिस्तान एम्बेसी का नाम लें तो सबसे सफ़े अव्वल में खड़े होते हैं। तो हर वो काम जो कम्युनिटी का होता है, पाकिस्तानियों का होता है, उसमें भरपूर हिस्सा लेते हैं। मेरी मुराद है चौधरी शौकत साहब, जो कि मशहूर बिजनेसमैन है, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। चौधरी साहब, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब और आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के मसाइल और उनके जो भी मामलात होते हैं उनको उजागर करते रहते हैं।
1: सब शुक्रिया आपका। चौधरी साहब, ये खबरें लगती रहती हैं, प्रोग्राम होते रहते हैं, कौमी त्यौहार होते हैं, प्रोग्राम होते हैं। 28 मई के हवाले से प्रोग्राम हुए, डेफिनेट आप गए भी होंगे, सुना भी होगा, और ये अच्छी बात है। 28 मई मनाना चाहिए, खुशी की बात है, कम्युनिटी को इकट्ठा भी होना चाहिए, सबका प्रोग्राम होता है। लेकिन चौधरी साहब, इसमें एम्बेसी ने, हमने देखा कि हमेशा एम्बेसी हर किसी के साथ तावन करती है, कोई फर्क नहीं रखते, और उनकी अपनी मसरूफियात भी होती है। जहाँ कोई बुलाता है, कोई सियासी ना हो जो कौमी लिहाज से हो, किसी ने 24 को बनाया या यौम तकबीर, किसी ने 28 को बनाया, तो अगर इसको सियासी रंग ना दिया जाए तो इन जगहों में लोग ये जाते रहते हैं। लेकिन छुट्टियां भी आपको पता थी, छुट्टियों में लोग हाजिर भी नहीं होते, मौजूद भी नहीं होते, इस मुल्क में भी नहीं होते। तो चौधरी साहब, आपने बहुत सारी बातें सुनी, हमने मीडिया में पढ़ी, तो खबरें ऐसे आ रही हैं जैसे वो, क्योंकि आप भी एक जमात से तल्लक है, मुस्लिम लीग काफ ने भी बाइकाट किया, फलां ने फलां फलां ने भी किया, बाइकाट करेंगे, तो इस तरह की खबरें आप भी देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं, आप क्या कहेंगे एज ए सियासतदान और बिजनेसमैन?
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, राजा साहब बहुत शुक्रिया। राज साहब, जैसे कि आपने थोड़ा सा तफसीली बताया पाकिस्तान अम्बेसी के हवाले से, मैं समझता हूँ पाकिस्तान अम्बेसी हमारा छोटा पाकिस्तान है डेनमार्क में, और माशाल्लाह जनाब शोएब सरवर साहब जो हमारे अम्बेसडर है, वो पूरा अम्बेसी का अमला इस वक्त बहुत ही अच्छा काम करता है, और पूरी कम्युनिटी के साथ इनका तावन होता है। कोई भी काम हो, कोई भी कहीं गैदरिंग हो पाकिस्तान के हवाले से, शोएब सरवर साहब हमेशा टाइम देते हैं, अम्बेसी हमेशा टाइम देती है। और आपको पता है ये जो इशू बना था, ये काफ लीग के हवाले से जो लिखा है, मेरा इस ग्रुप के साथ कोई तल्लक नहीं है, काफ लीग के ग्रुप के साथ तल्लक नहीं है ये। और मैं समझता हूँ कि ये किसी बंदे का फर्दन फैसला हो सकता है कि बाइकाट कोई करे अपना पाकिस्तान अम्बेसी का। मैं बिल्कुल डंके की चोट पे पाकिस्तान अम्बेसी के साथ खड़ा हूँ, पाकिस्तान अम्बेसी के साथ रहूंगा हमेशा से। पाकिस्तान अम्बेसी हमेशा से कम्युनिटी की आवाज बनी है, कम्युनिटी के मसाइल को उजागर किया है, उनके साथ होते हैं, और जो भी दिन मनाए, जो भी कोई ऐसा काम हो, जो भी ऐसा दिन हो, तो आप अप्रोच करें अम्बेस शोएब सरवर साहब से या फर्स्ट एक्पी है अली स्टार साहब से, तो वो टाइम देते हैं। ये दिन इस तरह बन गया था क्योंकि ईद का दिन था, ईद के दूसरे दिन इन नून वालों ने प्रोग्राम बनाया था। इसमें आपको पता है कि अपने अपने मामला तो होते हैं, वो ये तो हम छोटे से अपने घर कुंबे की बात करते हैं, वो तो अम्बेसडर है, पूरे पाकिस्तान के अम्बेसडर है, पूरे पाकिस्तान की अम्बेसी है, और पूरी दुनिया के लिए वो अम्बेसडर है, पाकिस्तान के अम्बेसडर जो है, तो उनका अपने भी टाइमिंग होती है अपना, हो सकता है उनका शेड्यूल टाइट हो, उनका कोई इस तरह का हो, इन लोगों को चाहिए कोई और दिन रख लेते, ईद के दूसरे दिन ही इन्होंने रखा। लेकिन लेकिन मैं उनकी उन पर बात नहीं करता, मैं एज ए अम्बेसी के हवाले से करता हूँ। अम्बेसी बहुत अच्छा काम कर रही है, शोएब सरवर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कम्युनिटी के साथ तावन करते हैं, और ये बिल्कुल प्रोपोगंडा हो रहा है, बिल्कुल इसका हम बिल्कुल कम्युनिटी डेनमार्क की कोई हिस्सा नहीं है, और हमेशा से पाकिस्तान अम्बेसी ने काम अच्छे तरीके से किया है, हर मसले पे काम कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है, किसी की जाती हो सकती है, लेकिन इसका पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ कोई तल्लक नहीं है। और जो खबरें भी लगती हैं, खबार वालों को भी चाहिए कि वो अपनी तरदीद किया करें, अपना देखें इस तरह की खबरें जो है ना, पहले उनको जो है ना पिन पॉइंट करके उसके बाद ये करनी चाहिए। ये बिल्कुल, इसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम पाकिस्तान अम्बेसी के साथ खड़े हैं, इंशाल्लाह पाकिस्तान अम्बेसी के शाना बिशाना रहेंगे, शोएब सरवर के साथ खड़े हैं, बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान होने के बावजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी के जो है ना अम्बेसडर जो है ना पाकिस्तान के, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की इज्जत इस वक्त दुनिया कर रही है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम इन त्योहारों पे, इन दिनों में या कोई इस तरह की बात जो होती है उस पे पाकिस्तान की या पाकिस्तान की इंसल्ट करने की कोशिश करते हैं, ये कभी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये बिल्कुल हम नहीं एक्सेप्ट करते। हम पाकिस्तान अम्बेसी के साथ हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह पाकिस्तान अम्बेसी के साथ रहेंगे।
1: जो सब आपका मौकफ आ गया और आपने बड़े खुले अल्फाज में अपना मौकफ बयान किया और ये आपका राइट है। समय नाजरीन, ये जो प्रोग्राम होता है ये इंफॉर्मेशन के लिए होता है, तो जब भी कोई बात की जाए तो सोच समझ कर बात की जाए। यहाँ आज़ादी है बात करने की, बोलने की, लिखने की आज़ादी है, तो हम लोग जमहूरी हैं, जमहूरी बहुत जमहूरियत में बात होनी चाहिए, लेकिन मौके की मुनासिबत से बात होनी चाहिए। खाली प्रोपगंडे की शक्ल में एक बयान दाग देना, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जिस तरह चौधरी शौकत साहब फरमा रहे हैं, ये आपका हक है बात करना, हम किसी को रोकते नहीं है कि वो बात नहीं कर सकता, कोई भी बात करना चाहे तो उसको दिए, हमारा टाइम हाजिर है। चौधरी साहब आपने बड़ा ज़बरदस्त बयान दिया, मुल्की हालात पर थोड़ी सी बात कर ले। पाकिस्तान बड़ी अब तरक्की कर रहा है और चूंकि आप खुद बिजनेसमैन हैं, आपको पता है कि तरक्की हो रही है या नहीं हो रही। ये आप सारा कंस्ट्रक्शन का काम देखें, आपके खारियां गुजरात में आप देखें कितने तरक्याती काम हो रहे हैं। चौधरी शाफे साहब जो है बड़े काम कर रहे हैं, उनके भाई जो वजीर है हमारे ओवरसीज के, वो बड़े काम कर रहे हैं। और खबरें ये भी आ रही हैं कि वो 14 अगस्त को चौधरी सालक साहब भी आएंगे, और इन चीज़ों का डेफिनेट आपको भी पता होगा, आपको इलम में होगा, आपको इतमाद में लिए बगैर तो लीडर जा नहीं आते।
2: राय साहब, जैसे आपने फरमाया कि पाकिस्तान के हवाले से माशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजान है और बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की दुनिया में रिस्पेक्ट हो रही है। कुछ लोग होते हैं कि जो मनफी सोचते हैं, लेकिन पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत अच्छा सोचती है, पाकिस्तान के साथ है, इंशाल्लाह पाकिस्तान के साथ देगी। और पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ना अब बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं पंजाब, अपने इलाके की, जैसे मेरे बात की आपने हमारे गुजरात की, तो जो है ना हमारे गुजरात में हमारे चौधरी बरादरान माशाल्लाह इतना अच्छा काम कर रहे हैं। वो पहले होता था कि करप्शन ये हो रहा है वो हो रहा है, कि कोई भी अपोजिशन लोग भी वो उनकी तारीफ कर रहे हैं, चौधरी शाफे साहब की, चौधरी सालक साहब की, कहते हैं कि बहुत शरीफ बाप के बेटे हैं, अच्छे हैं, हर बड़े अच्छे तरीके से मनज़म तरीके से ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए और अपने जिले के अपने डिस्ट्रिक्ट के तरक्की के लिए ये काम कर रहे हैं। सालक साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ओवरसीज की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। देखिए, ये पहले कश्तियां डूबती थी और उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों में जाके दौरे करके उन्हें कहा कि हमें पैकेज दें ताकि हम लीगल तरीके से अपनी आवाम को भेजें और ताकि वो पाकिस्तान के लिए भी खिदमत करें और आप लोगों के मुल्क में जहां आते हैं वो भी लीगल तरीके से आके खिदमत करें। ये उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। और अब जो प्रोपोगंडा पाकिस्तान का होता था कि ये दो नंबरी लोग भेजते हैं, इस तरह करते हैं, ये इनमें मेरे ख्याल में बहुत हद तक जो सालक साहब जब आए हैं तो उसके बाद ये काम खत्म हो गया है, और मैं समझता हूँ ना होने के बराबर रह गया। तो बाकी भी अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि जो कोई थोड़ा सा है वो भी खत्म होना चाहिए, लीगल तरीके से पाकिस्तानियों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पाकिस्तान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और चौधरी शाफे साहब जो है पंजाब में हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो काम कर रहे हैं गुजरात के हवाले से, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से वो जो है डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अपने सूबे की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो मैं समझता ये बेमिसाल है। और इसी तरीके से ये होना चाहिए, और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान अभी रुकने वाला नहीं है, पाकिस्तान इस तरीके से तरक्की करेगा तेजी से कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया की जो है ना पूरी दुनिया कहेगी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने थोड़े से अरसे में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। पाकिस्तान की क्यादत ने, चीफ मार्शल जो है ना हमारे हैं, वो फौज हमारी जो है अच्छा इस तरीके से किरदार अदा कर रही है, जो है ना दहशतगर्दों पे काबू पा रही है। उसके बाद ये देखे मुल्क के बारे जो जंग हो रही है, इतनी बड़ी जंग जो है ना रुकवाई है पाकिस्तान ने, ये छोटी सी बात नहीं है, ये पाकिस्तान का कुदरती, अल्लाह पाक ने इसकी रस्सी जो पकड़ी हुई है, अल्लाह पाक तरक्की दे रहा है पाकिस्तान को, अल्लाह पाक पाकिस्तान को तरक्कियों के रास्ते में गामजान इस तरीके से तेजी से जो कर रहा है कि अल्लाह पाक के पीछे जो है ना ये हमारी मदद है अल्लाह पाक की, जो इस तरीके से इतनी तेजी से चीफ मार्शल साहब जो है ना हाफज जो है और कुरान पाक हिफज किया हुआ है, इससे तरीके के अल्लाह पाक उनको और जिंदगी दे, इस तरीके से वो अच्छे पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। सियासी हवाले से वो खुद देख रहे कि ये जो प्रोपेगंडे होते ही रहते हैं, लेकिन हम जो अब डेनमार्क में रहते हैं, हम फील कर रहे हैं कि पाकिस्तान की एक रिस्पेक्ट दुनिया में हो रही है, हमारी भी हो रही है और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट हो रही है कि पाकिस्तान भी एक मुल्क है जो कि पूरी दुनिया को अमन के रास्ते में गामजान कर सकता है। राज साहब,
1: चल साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया, इंशाल्लाह आपसे राबता रहेगा।
2: जी बहुत शुक्रिया राज साहब, बहुत मेहरबानी, तो अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। सामान्य नाज़रीन, ये थे चौधरी शौकत, जो कि डेनमार्क के मशहूर बिजनेसमैन हैं। उन्होंने बातें की, दिल की बातें की और बड़ी खुलकर बात की, कोई लगी लिपटी बात नहीं की। एज ए पाकिस्तानी, एज ए सच्चा पाकिस्तानी उन्होंने अपने ज़मीर की बात की। सामान्य नाज़रीन, हमारा किसे मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, अगर कोई बात करना चाहता है, अपनी राय देना चाहता है, उसके लिए अदारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
3: सामईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपके खिदमत में हाजिर हैं।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का ताज़ा तरीन प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। 31/5/2026 का प्रोग्राम है। दर आपकी आवाज़ के स्टूडियो से बराह रास्त आपसे बात कर रहे हैं और आपको ताज़ा तरीन मालूमात भी देते हैं और शहर में खबरें भी गर्दिश करती रहती हैं और लोगों के नाम भी जो है इस्तेमाल हो जाते हैं। लोगों को पता भी नहीं होता कि मेरा नाम किस जगह इस्तेमाल हुआ, मेरा नाम किसने लिख दिया है। तो डेनमार्क की एक बड़ी मौजूद शख्सियत जो कि मुस्लिम लीग काफ के जो है यहाँ पंजाब के वो नायब सदर है, यहाँ इन्होंने अपनी टीम चंद दिन पहले हुए उन्होंने मुकम्मल की, तो एक खबर चल रही थी तो उन्होंने हमने कहा जरा उनसे पूछ लें ये खबर, चूंकि आपकी जमात के नाम से है तो चूंकि आपकी जमात को आप हेड कर रहे हैं, पंजाब के आप नायब सदर हैं। मिर्जा अजहर बेग साहब, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं।
2: जी बड़ी मेहरबानी मेरी तरफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी
1: बेग साहब, मैंने छोटी सी तमीज बांध दी है और आपका जिक्र हुआ कि पाकिस्तान अंबेसी के खिलाफ आपका नाम भी जो इस्तेमाल किया गया, आपकी जमात का नाम इस्तेमाल किया गया, आप क्या कहेंगे पाकिस्तान अंबेसी के मुतालिक?
2: जी जो भी किसी ने, पहले तो मुझे पता ही नहीं है कि हम लोग किन के साथ खड़े हो गए अंबेसी के खिलाफ। ये बोला कि हम अंबेसी से बायकॉट करते हैं, हमारी अंबेसी है, हमारे पाकिस्तान है छोटा और हमारी नुमाइंदगी करते है और हम लोग कभी भी उनके खिलाफ नहीं चलेंगे क्योंकि वो हमारे मुल्क की इज्जत का मसला है। तो ये छोटी छोटी बातों पे जो फेक स्टोरी लगा देते हैं, चला देते हैं, जी हम भी इकट्ठे हैं तो हम बायकॉट करते हैं, जो भी ये छोटी छोटी पार्टियां करते हैं, बुलाते हैं सियासी या गैर सियासी अंबेसी को। मैंने देखा है कि वो हर जगह पे हर मौके पे वो अम्बेसडर साहब और सेक्रेटरी साहब आते हैं। मैं बड़े प्रोग्रामों में गया हूँ जो पाकिस्तानी जो फंक्शन वगैरह होते हैं।
1: तो आप अम्बेसडर साहब के काम से मुतमिन है या अम्बेसी के अमला से मुतमिन है आप?
2: जी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत हर बंदे को मैंने देखा कि वो वेलकम करते हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है कि ये बंदा बिजनेसमैन है, ये बंदा काम करता है इधर, कोई वो शख्सियत को सलाम नहीं करते, वो एज ए पाकिस्तानी सबको वो सलाम दुआ लेते हुए मैंने खुद भी देखा, मेरे साथ भी उन्होंने सलाम दुआ ली है। मगर कुछ लोग आगे होते हैं, कुछ लोग जरा पीछे होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पास टाइम होता है वो अम्बेसी के जाते रहते हैं गा बुगा काम काज के लिए भी वैसे भी, तो वो बंदे को जेलस नहीं होना चाहिए। सब लोगों की सलाम दुआ, सब की अम्बेसी है, सब जाते हैं, सब बैठते हैं, मिलते हैं। वो कोई वो मसरूफियात में से अगर उनके पास नहीं टाइम होता तो कोई इनवाइटेड करता है
1: तो बेग साहब इसका मतलब हुआ कि आप हमेशा की तरह पाकिस्तान अम्बेसी के साथ खड़े हैं और आप खुद कह रहे हैं जिम्मेदार आदमी पंजाब के आप नायब सदर हैं और आप कह रहे हैं कि

0: इसी तरह बैठ जाती हैं, जिस तरह चलती हैं इसी तरह बैठ जाती हैं।
1: एम्बेसी हमारे जो देखे ना, हमारी क्यादत कभी भी एम्बेसी के खिलाफ हमें कोई भी हमारा बंदा बोलेगा काफ लीग का, तो वो नहीं बोलने देंगे, क्योंकि एम्बेसी तो उन्होंने खुद लगाए हैं बंदे, तो हम ही उनको बोलेंगे ये बंदे अच्छे नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। मुझे मेरे नोटिस में होगा तो मैं जरूर नोटिस लूंगा और मैं अपनी क्यादत को भी बोलूंगा, उसका कोई काम नहीं है पार्टी के अंदर जो बंदा अपनी मर्जी से एम्बेसी के खिलाफ बोलेगा। कौन सा एम्बेसी ने हमारे साथ जुर्म किया है या ऐसा काम किया है कि हम अल्लाह माफ करके उनके खिलाफ चलेंगे? नहीं चलेंगे।
0: बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। सवान नाजरीन, ये थे मिर्ज़ा अज़हर बेग साहब जो के पंजाब के नायब सदर हैं और इन्होंने यहाँ पार्टी को मनज़म किया और उन्होंने फुल जो है बड़े ज़ोर से तरतीद की। वो कानूनी हक भी अपना वो रखते हैं कि उनकी पार्टी का नाम इस्तेमाल किया गया। कोई बात कहना चाहता है तो उसके लिए अदारा आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है।
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा
0: हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: क्यों ना हो बाहर लम्हा

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।